0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो

सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोवोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए।

0: समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग 1 सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य

0: छात्र शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय

हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Musically Yours पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज RJ अभिनव 107.1 MHz FM Rainbow पर. जी हाँ, और है साथ में अब आपका फेवरेट शो मस्त मुंबई और सेगमेंट है आज चल के सचे. जैसे कि आपको पता है कि हर बार हर दिन हम नया सेगमेंट लाते हैं, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो आपको सैर सपाटे पर भी ले जाता हूँ, ट्रैवलिंग पर भी ले जाता हूँ, जर्नी पर भी ले जाता हूँ, और एक होता है बड़ा प्यारा सा सफर मेरे साथ. आज हम जाएंगे बादामी गुफा मंदिर, कर्नाटक की चट्टानों में छुपी हुई विरासत. नमस्कार दोस्तों, और आइए शुरुआत करते हैं. हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, हर नदी कुछ कहती है, हर पहाड़ अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे बैठा होता है. भारत ऐसा देश है एक जहाँ कदम पदम पर इतिहास सांस लेता है, बस जरूरत होती है उसे महसूस करने की. आज के हमारे खास सफर आचल के तुझे में हम निकल रहे हैं महाराष्ट्र से पड़ोसी राज्य कर्नाटक की ओर, एक ऐसी जगह जहाँ पत्थर बोलते हैं, जहाँ चट्टानों में भगवान बसते हैं, जहाँ कला इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई देते हैं. आज की हमारी मंजिल है बादामी गुफा मंदिर.

दोस्तों, अगर आपने कभी इंटरनेट पर लाल रंग की ऊंची ऊंची चट्टानों से बने हुए पुराने यानी कि प्राचीन मंदिरों को देखा है, उनकी तस्वीरें देखी हैं, तो यकीन मानिए असलियत तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित बादामी कभी चालुक्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस वक्त इस शहर का नाम वातापी था और यही वो जगह है जहां से दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश ने कला, स्थापत्य और संस्कृति की एक ऐसी मिसाल पेश की जिन्हें आज भी दुनिया सम्मान से देखती है। करीब 1500 साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब केवल हथौड़ी और छेनी की मदद से इन विशाल चट्टानों को काटकर ऐसी अद्भुत गुफाएं बनाई गई जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाए। यहाँ मांझी द माउंटेन मैन की याद आ गई होगी आपको। दोस्तों सोचिए, अगर बिना सीमेंट, बिना लोहे, बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के केवल कल्पना, धैर्य और अद्भुत कारीगरी के दम पर इंसान ने पत्थरों में पूरी दुनिया बसा दी, तो यही तो भारत की पहचान है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और अगर आपको पुराने मंदिर पसंद हैं, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो फिर आप ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां भीड़ कम हो और विरासत ज़्यादा, तो बादामी आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं आप लोगों के साथ मस्त मुंबई में आंचल के तुझे में मौजूद आपका हमराज आरजे अभिनव जी। हाँ, और अब बात कर रहे हैं हम लोग बादामी गुफा मंदिर की, जहाँ आज आपको ले गया हूं मैं अपने साथ इस प्यारे से खूबसूरत से सफर पर। बादामी पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजर दूर दूर तक फैली हुई लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ियों पर जाती है। सूरज की रोशनी जैसे जैसे बदलती है, इन चट्टानों का रंग भी बदलता हुआ महसूस होता है। सुबह हल्का सुनहरा, दोपहर में चमकीला लाल और शाम के समय तांबे जैसी आभा, और अगर बारिश हो जैसे कि आजकल यहां हो रही है तो बस लाल रंग और गाढ़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे नेचर प्रकृति खुद एक कलाकार हो। इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है बादाम की प्रसिद्ध गुफाएं, बादामी गुफाएं। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, नीचे पूरा बादामी शहर दिखाई देने लगता है। दूर तक फैला हुआ शांत वातावरण, सामने झील और चारों तरफ लाल लाल पहाड़ और हवा में इतिहास की खुशबू। यही एक्सपीरियंस किसी भी यात्री को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। ये ट्रेवलिंग प्लेस नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारतीय स्थापत्य कला की जीवित पाठशाला है। कस तो मजा है रेलईमा।

बना हूं मैं आप लोगों के साथ है सेगमेंट आज चल के तुझे, और सच में ही आपको लेके ही चला हूं अपने साथ। मेरे पास कई सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के मैसेज भी आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारती आनी जी, पंकज मोहड़ जी, प्रमोद जी, विजेंद्र जी और रणधीर सेन, सुमिता सेन, चंदिका सेन, बोनू सेन, यानी कि पूरी एक सेन फैमिली है। विजेंद्र जी घाटोल जी हैं अकोला से, महेश बोरा जी, और मुझे अभी एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने शेयर की है आरती शाह जी ने, कि बादामी में माँ शाकंभरी का बहुत बड़ा और भव्य दिव्य मंदिर है।

शाकंभरी माँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसके अलावा राजस्थान सकराय में भी शाकंभरी माता का एक प्रमुख मंदिर है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने भी वहाँ विजिट किया था और सृष्टि को शाकंभरी माता साग फल पान फूल देने वाली देवी हैं। इस देवी को कच्चे साग का श्रृंगार किया जाता है, गाजर भिंडी सबके हार चढ़ते हैं और ये भी अपने आप में खूबसूरत एक बात है हिंदुस्तान की, है कि नहीं कमाल। दूर तक फैला शांत वातावरण। इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण छठी और सातवीं शताब्दी के बीच शुरुआती चालुक्य शासकों के समय हुआ। चालुक्य राजाओं ने न केवल साम्राज्य बनाया बल्कि उन्होंने आर्ट को यानी कि कला को भी संरक्षण दिया। उन्होंने मूर्तिकारों यानी कि स्कल्प्टर जो होते हैं, पेंटर होते हैं, वास्तुकार होते हैं, उनको खुलकर काम करने का मौका दिया और यही कारण है, यही वजह है कि आज भी उनकी बनाई हुई संरचनाएँ यानी गुफाएँ दुनिया को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। दोस्तों एक बात बड़ी दिलचस्प है, जब मंदिरों की बात करते हैं तो अक्सर हमें अलग अलग पत्थरों से बने हुए भवन याद आते हैं, लेकिन बादामी गुफाएं नहीं, बादाम की गुफाएं बनाई गई हैं, उन्हें एक ही विशाल चट्टान को काटकर तराशा गया है। यानी जहां आज मंदिर दिखाई देता है कभी वहां केवल ठोस पहाड़ हुआ करता था। जैसे कि मैं आपको अजंता एलोरा ले जा चुका हूं और एलिफेंटा केव्स ले जा चुका हूं, ऐसे ही बादामी गुफाओं में भी इसी तरह की मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं। अब कल्पना कीजिए, कलाकार उस पहाड़ को देखता होगा और उसकी आंखों में पहले से पूरा का पूरा मंदिर दिखाई देता होगा। और बस इसी के साथ अब लेकर आया हूँ मुसाफिर हूँ यारों।

बड़ा हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आरजे अभिनव पाराशर। बार बार अब नाम इसलिए बोलता हूँ, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि बड़ी जल्दी बोलते हो, तो इसलिए नाम बिल्कुल साफ और धीमे धीमे बोल दिया करो, जिससे हमें पता चले कि कौन है। तो शुक्रिया आप सभी लोग।

का आपके इतने प्यार का। जैसा कि मैंने बताया था कि हमको भवन याद आते हैं, लेकिन इस मंदिर को, इन गुफाओं को काटकर छेनी से बनाया गया है तराश कर। धीरे धीरे अनावश्यक पत्थर हटाते चले गए और आखिर में सामने आ जाती थी एक अद्भुत कलाकृति। ये असली कला है दोस्तों। बदामी में कुल 4 प्रमुख गुफाओं के मंदिर हैं। इनमें से 3 खासकर हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जबकि चौथी गुफा जैन धर्म को समर्पित है, और यही भारत की सांस्कृतिक विविधता का सबसे ज्यादा खूबसूरत उदाहरण भी है। एक ही पहाड़ी, एक ही परिसर यानी कैंपस, लेकिन अलग अलग धार्मिक परंपराओं का सम्मान। ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत रही है। अब जरा पहली गुफा की ओर चलते हैं और सीढ़ियां चढ़ते ही सामने एक विशाल बरामदा दिखाई देता है। पत्थरों के सुंदर खंभे यानी स्तंभ, उन पर की गई नक्काशी और हर तरफ बारीक कलात्मक काम। ये गुफा भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। यहाँ भगवान शिव के कई रूपों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, और सबसे ज्यादा फेमस प्रतिमा है नटराज स्वरूप, नृत्य करते भगवान शिव और उनके अनेक हाथ। हर हाथ एक अलग मुद्रा में, और ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं बल्कि नृत्य यानी कि डांस स्वयं जीवित हो गया हो। मूर्तिकार ने गति को भी पत्थर में कैद कर लिया, यानी स्पीड को। और आपने कमाल की बात देखी कि ये उस जमाने की बात है जब AI नहीं था, इंजीनियरिंग खास नहीं थी, लेकिन इतनी डिटेलिंग, इतनी माइन्यूटली वर्क किया गया है, इतनी डिटेलिंग में वर्क किया गया है, काम किया गया है। उस कला को नमन करते हैं हम अपनी तरफ से, कि जो बहुत ही खूबसूरत निखर कर बनकर आई है इस तरह से। आपको भी गाड़ी बुला रही है वहां जाने के लिए, और गाड़ी बुलाने से याद आया कि गाड़ी आपके पास ले ही आता हूं।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

0: आप लोगों के साथ मौजूद हूँ आपका हमराज आरजे अपना। बीच में छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी कर ही लेते हैं। बात कर रहे हैं हम बदामी गुफाओं की। मूर्तिकार ने गति को भी पत्थर में कैद कर लिया, नटराज की मूर्ति जिसके बारे में हमने बात की थी, और यही वजह है कि बादाम की मूर्ति कला को, यानी कि बादामी गुफाओं की मूर्ति कला को भी भारतीय कला के श्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है। दोस्तों, जब हम इन मूर्तियों को करीब से देखते हैं तो महसूस होता है कि कलाकार ने केवल चेहरे नहीं बनाए, उसने भावनाएं भी कर दी। कहीं शांति, कहीं शक्ति, कहीं करुणा, कहीं वीरता। हर प्रतिमा, हर मूर्ति अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। यही रीजन है कि इतिहास प्रेमी यहां घंटों बिताते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इन गुफाओं के भीतर यानी कि अंदर कभी रंगीन चित्र भी बने हुए थे, और आज उनमें से बहुत कम अवशेष बचे हैं, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो इस बात के प्रमाण है कि उस वक्त चित्रकला भी कितनी ज्यादा विकसित थी। दोस्तों, अगर आप कभी यहां आ जाएं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से इत्मीनान के साथ हर स्तंभ को देखिए, हर मूर्ति को देखिए, हर दीवार को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर पत्थर में कहानी छुपी हुई है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर केवल तस्वीरें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये मतलब इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये रील के लिए नहीं है, वीडियो के लिए नहीं है, सबसे पहले ये आपके लिए है। लेकिन विरासत को समझने के लिए वक्त देना पड़ता है, और जर्नी, यात्रा, सफर तभी पूरा होता है जब जगह केवल कैमरे में नहीं, दिल में भी उतर जाए। सफर अभी शुरू हुआ है दोस्तों, अभी हमें दूसरी, तीसरी और चौथी गुफा में भी जाना है, जहाँ भगवान विष्णु के अद्भुत रूप मिलेंगे, जैन दर्शन की झलक मिलेगी, और जानेंगे उस झील के बारे में जो सदियों से इन गुफाओं की खूबसूरती को और भी बढ़ाती हुई आ रही है। कहीं मत जाइएगा, सफर जारी है मस्त मुंबई में मेरे साथ, हमारे खास सफर आचल के तुझे में। आ रहा हूं प्यारे से छोटे से एक ब्रेक के बाद।
1: यार,

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: पेश करता हूं अब सबसे पहले मुसाफिर मोहित चौहान की आवाज में।

राजू तू भी ऐसा सोचने लग गया, राजू तू पढ़ा लिखा समझदार, कहीं तो ये भी तो नहीं सोचा कि इंसान की भूख का संबंध हो सकता है बारिश से। समझ में नहीं आता राजू अब मैं क्या कहूँ, उन बातों को सोचने लग गया जिन्हें कभी सोचना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन अब जिनको सोचना जिंदगी और मौत से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सवाल ये नहीं है कि अब पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं है कि मैं जीऊँगा या मरूंगा, सवाल तो ये है कि दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं तो बेमन की बीमारी दुनिया में अंधों की तरह जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर है तो वो अपने बंदों की फरियाद क्यों नहीं सुनता। अब ना सुख है ना दुख, ना मोम ना माया, ना इंसान ना भगवान, अब सिर्फ मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, सिर्फ मैं। गायक का एक खूबसूरत सा गीत।

कनाया हाथ किस कमाया कुछ तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

बनाऊँ आप लोगों के साथ, और 9:30 बजे आप लोगों के पास एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और लेकर आऊंगा एक हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास 10 बजे वापस और अगला शो भी लेकर आऊंगा। जी हाँ, वहाँ भी कुछ जारी रखेंगे ट्रैवलिंग की बात, लेकिन अब आपको बताता हूँ और गुफाओं के बारे में और वहाँ पर ले चलता हूँ। जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर ले जाती हैं वैसे ऐसे नज़ारा ज़्यादा मनमोहक होता जाता है। नीचे फैला हुआ बादामी शहर, सामने झील और लाल चट्टानों की ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति और इतिहास से मिलकर किसी कलाकार का सपना साकार किया। हम पहुंचते हैं दूसरी गुफा में। ये गुफा भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जो बात ध्यान खींचते हुए यहाँ की संतुलित और सुंदर वास्तुकला। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहते हैं और भारतीय संस्कृति में उनका स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि इस गुफा में अनेक स्वरूपों को बड़ी ही कलात्मकता से दर्शाया गया है। यहाँ आपको त्रिविक्रम स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, और इस कल्पना को पत्थर पर उकेरा गया है। ये हैं बड़ी खूबसूरत गुफाएं। यह भगवान विष्णु के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कहीं वो वराह अवतार में है जहां पृथ्वी को बचाते हुए दिखते हैं, कहीं वो नरसिंह स्वरूप में है जो धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत का प्रतीक है। इन मूर्तियों की खास बात है कि गुस्सा भी, शक्ति भी, करुणा भी और संतुलन भी। और नीचे दिखाई देती है अगस्त झील। सुबह के समय हल्की धूप, शाम के वक्त सुनहरी किरण और बीच में शांत जल। अगर आप ड्रोन से इस पूरे क्षेत्र को देखें तो पता चलता है प्रकृति और स्थापत्य ने मिलकर कितनी खूबसूरत सी रचना बनाई है। अगली गुफा है 3 शादा गुफाओं में। उसके बाद चौथी गुफा है जो जैन बदले की तरफ हमको ले जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वातावरण शांत होता है और भीड़ यहाँ कम दिखाई देती है, और यहाँ एक ही परिसर में अलग अलग सुंदरताओं का संगम हुआ है। भावना है, सांस्कृतिक भावना। चेहरे पर एक शांति दिखाई देती है। यहाँ पर भगवान महावीर और अन्य जैन तीर्थकरों की शांत और गंभीर प्रतिमाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे आज भी वो ध्यान में लीन है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह आत्मचिंतन का स्थान भी था और ध्यान का स्थान भी था। सामने दिखाई देती है वही अगस्त झील, और इसके बाद है धरोहर भूतनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और सबसे बड़ी खूबी इसकी जगह है, स्थान झील के बीचों बीच। और ये है कमाल की गुफाएं एक के बाद एक, एहोल पट्टकल। दोबारा आपको ज़रूर लेकर आऊँगा, यहाँ पर जो सफ़र थोड़ा सा कम हुआ या अधूरा रह गया है वो भी लेकर आता हूँ आप लोगों के पास। अभी ये गीत लेकर जो कि है पटाखा गुड्डी।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहाँ अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहाँ कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत्थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल

गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: जी, वतन का राग हमने सुना और अब थोड़ी देर में हम सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर सुनेंगे हम अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में जोरदार बारिश जारी है। मुंबई में पिछले चार दिनों में कुल 588 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। ये जुलाई महीने में होने वाली कुल बारिश का 74% है। मुंबई के उपनगर विक्रोली में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 316 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे व सतारा के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक के घाट इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और

दूसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरी और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। नाफेड और नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: इसी म्यूजिकल योर शो बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अवरा। अब जारी है नया शो और नए शो को लेकर आया हूँ आप लोगों के पास, वो है नमस्ते भारत। सेगमेंट है मेरा दिल मेरी बातें और आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने रैकेट से सिर्फ शटल ही नहीं उड़ाई बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को भी नई ऊंचाई दी। ये कहानी है भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की। मैं हूँ आपका अपना आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। हम दिन बात करते हैं हर दिन किसी ऐसे इंसान की जिसकी कहानी में कुछ नया सोचने, नया करने और खुद पर भरोसा रखने की वो हमें प्रेरणा देती है। आज की शख्सियत ऐसी है जिसका नाम सुनते ही आंखों में बैडमिंटन कोर्ट, तिरंगा और जीत की मुस्कान दिखाई देती है। आज बात करेंगे पद्म भूषण, ओलंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियन और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा पीवी सिंधु की। पेश करता हूं सबसे पहले ये गीत।

हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका अमराज आरजे अभिनव 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर, नमस्ते भारत, और सेगमेंट है मेरा दिल मेरी बातें। बात कर रहे हैं पीवी सिंधु की। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और अनुशासन होता है, और सिंधु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में जन्मी पुसरा वेंकट सिंधु एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां खेल जीवन का हिस्सा था। उनके पिता पी वी रमना और माता पी विजया दोनों राष्ट्रीय स्तर के बॉलीवुड खिलाड़ी रहे हैं। उनके पिता का खेलों में योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पेश करता हूं आप लोगों के सामने चक दे।

आप लोगों के साथ यहाँ आपके शो नमस्ते भारत में बात कर रहे हैं हम लोग पीवी सिंधु की। सोचिए घर में खेल का माहौल था लेकिन सिंधु ने अपने माता पिता का खेल नहीं चुना, उन्होंने चुना बैडमिंटन और यही फैसला आगे चलकर भारतीय खेल इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बन गया। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर सिंधु ने बैडमिंटन को ही क्यों चुना। इसकी एक बड़ी वजह रही है महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया तब छोटी सी सिंधु ने भी सपना देख लिया कि एक दिन वो भी देश के लिए ही खेलेगी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

कर्जिया बनाओ। सपना देखना आसान होता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो इंसान को महान बना देती है। सिंधु ने बहुत कम उम्र में बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरुआती प्रशिक्षण उन्होंने सिकंदराबाद में लिया और बाद में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकेडमी से जुड़ गई। दोस्तों गोपीचंद अकेडमी उनके घर से काफी दूर थी लेकिन दूरी कभी बहाना नहीं बनी। सुबह सुबह उठना, लंबा सफर तय करना, घंटों अभ्यास, फिर पढ़ाई और उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा।

काफ़ी सारे लोग मुझसे अभी बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो अपने मैसेज हमारे तक भेज सकते हैं 8657661071, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, याद रखिएगा। यहाँ पर हम आपके कॉल को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। और आज लुटेरा इस मूवी को रिलीज़ होकर भी 13 साल पूरे हो गए हैं, और इस मूवी का भी मैं आप लोगों के पास गीत लेकर आऊँगा। और बात कर रहे हैं हम लोग पीवी सिंधु की। जब बाकी छुट्टी होती थी और बच्चे छुट्टियों का इंतजार करते हैं, तब खिलाड़ी अभ्यास का इंतजार करते हैं। ये अंतर उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। सिंधु की लंबाई, तेज रिफ्लेक्स, फिटनेस और कोर्ट कवरेज बचपन से ही शानदार थी, लेकिन केवल प्रतिभा काफी नहीं होती। रोज का अभ्यास, मानसिक मजबूती और हार के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता ही किसी खिलाड़ी को विश्व स्तरीय बनाती है। धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनानी शुरू की। जूनियर लेवल पर उनके प्रदर्शन ने संकेत दे दिया था कि

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: सकाळची वेळ म्हणजे नुसती घाई गडबड, याची ट्रेन, त्याची बस, ह्याचा डबा, हिचे कपडे
2: आणि ऑफिस मध्ये फक्त टार्गेटचे आकडे। निवांतपणा काय तो फक्त सॅटर्डे आणि संडे।
1: अहो, मग तुम्ही का ऐकत नाही रेनबो फंडे?
2: रेनबो फंडे,
1: हो, रोजचे दिनविशेष, इन्स्पायरिंग स्टोरीज, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या सकारात्मक गोष्टी सकाळी सकाळी ऐकता आल्या की रोजचाच दिवस होतो फन डे।
2: मग ऐकायलाच हवा रेनबो फंडे।
1: नक्की ऐका रोज सकाळी 6:05 107.1 MHz FM रेनबो वाहिनीवर, तसंच न्यूज ऑन AIR ॲपवरही।
2: रेनबो फंडे।

बड़ा हूँ मैं आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अवना। और जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं पीवी सिंधु की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता दोस्तों, खेल हमें हार को एक्सेप्ट करना भी सिखाता है। सिंधु ने भी कई मैच हारे, कई बार उम्मीदें टूटी, लेकिन उन्होंने कभी रैकेट नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनानी शुरू की और जूनियर स्तर पर उनके प्रदर्शन ने संकेत दिया था।

बनाऊ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आरजे बनाऊ। नमस्ते भारत में मेरा दिल मेरी बात है सेगमेंट और बात कर रहे हैं पीवी सिंधु की। भारतीय बैडमिंटन के लिए खास रहे हैं कुछ वक्त, धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उनका सफर शुरू हुआ था और बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना, अनुभव लेना और लगातार खुद को बेहतर बनाना, ये उनका लक्ष्य था। साल 2013 भारतीय बैडमिंटन के लिए खास रहा। सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाली भारत की चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गई। पूरी दुनिया ने महसूस किया कि वो भारत की वो युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में, सालों में, बहुत सारे वर्षों में बड़ा कमाल करने वाली है।

इसके बाद सफलता का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। हर टूर्नामेंट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, उनकी स्मैश गति और सबसे बढ़कर मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता ने उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा तब होती है जब पूरा देश उससे उम्मीद लगाए बैठा हो और उस दबाव में प्रदर्शन करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और फिर आया वो साल जिसने पीवी सिंधु को घर घर में पहचान दिलाई, ओलंपिक। हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना, हर खिलाड़ी का सबसे कठिन मंच, और वहीं से शुरू हुई भारतीय खेल इतिहास की एक यादगार कहानी। आगे ये कहानी भी उतनी प्रेरणादायक है कि कैसे सिंधु ने ओलंपिक कोर्ट पर दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों का सामना किया, कैसे उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता और कैसे वो भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ियों में शामिल हुई। साल 2016, पूरी दुनिया की नजर थी रियो ओलंपिक पर। भारत को उम्मीद थी कि उसके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी इतिहास रचने वाली है। सिंधु ने एक एक मुकाबला शानदार अंदाज में खेला। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने विश्व की शीर्ष खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई। पूरे देश की निगाहें उस मुकाबले पर थी। फाइनल में उनका सपना स्पेन की कैरोलिना मारिन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। सिंधु ने पूरी ताकत लगा दी और हर एक पॉइंट के लिए संघर्ष किया। अंत में वो स्वर्ण पदक से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन रजत पदक जीतकर उन्होंने इतिहास बना दिया। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। दोस्तों, कभी कभी हार भी जीत से बड़ी होती है, क्योंकि वो पूरे देश को गर्व करने का अवसर देती है। रियो ओलंपिक के बाद सिंधु केवल एक खिलाड़ी नहीं, वो करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन गई। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो सफलता के बाद भी मेहनत करना ना छोड़े। सिंधु ने ऐसा ही किया। उन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। विश्व चैंपियनशिप, सुपर सीरीज और बड़े बड़े टूर्नामेंट में भारत का तिरंगा ऊंचा किया। साल 2019 ये साल उनके करियर का एक और गोल्डन पीरियड लेकर आया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक ऐसा खिताब जो हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। उसे इस गीत के लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, लेकर आया हूं स्वर्ण लू।

सिंधु पहले भी कई बार फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताब हाथ नहीं लगा था। इस बार उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सीधे गेमों में जीत दर्ज कर विश्व चैंपियन बनने वाली वो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। दोस्तों, कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा बार कोशिश करनी पड़ती है। सिंधु ने हार नहीं मानी और आखिरकार वही ट्रॉफी जीत ली जिसका सपना वर्षों से देख रही थी। इसके बाद आया टोक्यो ओलंपिक। पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौर से गुजर रही थी, खिलाड़ियों के लिए तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन सिंधु ने फिर कमाल कर दिखाया। उन्होंने कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वो लगातार दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। दोस्तों, ये उपलब्धि, ये अचीवमेंट केवल रिकॉर्ड नहीं है, ये वर्षों की मेहनत, अनुशासन और कभी ना हार मानने की सोच का परिणाम है। सिंधु ने देश को कई सारे बड़े सम्मान दिए, उन्हें अर्जुन पुरस्कार और देश ने उनको भी कई सारे बड़े सम्मान दिए। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन अगर आप किसी और इंटरव्यू को देखें और सिंधु के इंटरव्यू को देखें तो पाएंगे कि सफलता के बाद भी उनमें वही विनम्रता दिखाई देती है। वो अक्सर अपने माता पिता, अपने कोच पुलेला गोपीचंद और पूरी सपोर्ट टीम का धन्यवाद करती हैं और यही महान खिलाड़ियों की पहचान होती है।

चांद रखने के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं आज पीवी सिंधु की। जी हाँ, सिंधु की एक और खास बात है उनका अनुशासन, कड़ी फिटनेस, संतुलित भोजन, नियमित अभ्यास और मानसिक मजबूती। ये चार बातें उन्हें सालों तक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखती हैं। खेल में केवल शरीर नहीं, दिमाग भी जीतता है। जब सामने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी हो, जब पूरा स्टेडियम शोर कर रहा हो, जब करोड़ों लोग टीवी पर आपको देख रहे हो, तब मन को शांत रखना सबसे कठिन काम है और सिंधु ने कला सीख ली। आज दुनिया भर के युवा खिलाड़ी उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई सपना असंभव नहीं रहता। दोस्तों, पीवी सिंधु की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर सुबह की मेहनत, हर हार से मिली सीख, हर चोट, हर पसीने की बूंद मिलकर एक चैंपियन बनाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई सपना है, उसे छोटा मत समझिए। शुरुआत आज कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज का मेरा दिल मेरी बातें यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पीवी सिंधु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि आने वाले सालों में भी वो भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे और नई पीढ़ी को इंस्पायर करेंगे। मैं हूं आपका अपना आरजे अभिनव, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, और नमस्ते भारत में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई शख्सियत, नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। FM मुंबई के नाम से हम लोग हैं।

0: इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और AIR_Mumbai के नाम से ट्विटर पर। मेरा नाम है अभिनव पराशर, सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। गुड बाय, एंजॉय दिस रेन और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्स

नमस्कार, आप लोगों के बीच मौजूद हूं आरजे अभिनव। और अब वक्त चला है आज के समाचार का। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में जोरदार बारिश जारी है। मुंबई में पिछले चार दिनों में कुल 588 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये जुलाई महीने में होने वाली कुल बारिश का 74% है। मुंबई के उपनगर विक्रोली में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 316 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे व सतारा के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक के घाट इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बानीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है और प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। नाफेड और नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब अगला शो आप लोगों को सुनने को मिलेगा दिल्ली से रिले पोस्ट बॉक्स 111 यानी कि 111 DLC 12 11 बजे आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों के सामने। धन्यवाद।

नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्यप्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल, हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है,

0: वो सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा, जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
4: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन हम, मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है
0: जी,
4: आम तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म
0: जी,
4: क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है। अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है, देखिए आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
0: जी सर,
4: कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान, उसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है
0: जी,
4: और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में

0: ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसपे बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत,
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर्स जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी। तो उस डायलॉग को ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा
1: जी।
2: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हुए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं, जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 aircraft, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मोस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 110,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी

0: तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे। तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजिनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है।

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है
0: जी।
1: तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े, मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था
0: जी।
1: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था
0: जी।
1: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि, और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6-7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25-30 साल आप मान के चलिए। लेकिन नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर

0: यूनिट्स भी
1: एयर
0: हैं,
1: यूनिट्स भी हैं।
0: हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
1: जी
0: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी, वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है।
1: जी
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60 से 70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी,
1: जी
0: जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना,
1: जी
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है,
1: जी
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना।
1: लड़ना
0: लेकिन
1: जी
0: इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
0: नीलम जी, मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का,
1: जी
0: क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है,
1: जी
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को, और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये।
1: जी, तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लू प्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हमी तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है AI, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी AI का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहली बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको भी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
0: जी।
1: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
0: जी। PPP की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
1: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ GE है या जितने भी इनके टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
0: जी,
1: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
0: जी।
1: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मींस आज से एक डिकेड पहले, तो 19 टाइम्स गुना बढ़ गया है
0: जी।
1: आपको अभी पता है AI की, अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि AI तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन AI होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है, $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग यहाँ पर होगी और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है इतना वो बड़ा है।
0: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में

0: देशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है, साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
0: सब
1: एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे।
0: जी।
1: आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं, जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% एफडीआई बना दिया है डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे, उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है, जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में, खासकर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलकर भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट, जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबिलाईजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को, अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
0: जी।
1: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय, सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर, तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको। उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर, वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, और भारत के जो MI-25 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके

0: आया है ताकि उनको बचा सके। ये है भारत। हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है, सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी। देखिए, हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके।
1: जी,
2: क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के एमएसएमई सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा।
1: जी,
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे डीपीएस यूज में, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा पीएसयू शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो चार डीपीएसयू हैं, एक पीएसयू है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही इसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है। 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम top 10 नेशंस में आ जाएं।
1: जी,
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम top 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी,
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयरमार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी,
2: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग, वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज, रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था top 5 और top 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े।
1: जी,
2: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने कितने मिलियन

0: टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए, क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ आके बनाइए मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं
1: जी,
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर, और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: में हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहां बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक्स हैं। अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड देखिए फर्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी।
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे? और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन्स हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे, अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
0: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
1: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर 1 है
0: जी।
1: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफ

0: पिछले गया था ऑन ड्यूटी
1: जी।
0: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट एससीओ पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की
1: जी,
0: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन। पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
1: जी,
0: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी,
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूँ, तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
1: जी।
0: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, एससीओ के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
1: इंटरनेशनल
0: उसमें ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
1: जी,
0: ये बहुत कोरिलेटेड है। और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे, कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते, सकते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी,

0: आपको ये भी मालूम होगा कि सिक्स जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं
1: जी।
0: और अगर शिप्स में देखें वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश, कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20-30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे
1: जी।
0: ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा
1: जी। यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
1: जी।
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी।
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
1: जी।
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
1: जी।
2: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर।

0: हैं, क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है, तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर, तो उससे क्या फायदा होगा? विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो ये है भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित भी आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की, और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल वायुसेना से, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 12:26 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो। दोस्तों, ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से ज्यादा समय से निरंतर हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार अवश्य करेगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले 48 घंटों से जारी लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी जलभराव, पेड़ों के गिरने और एक इमारत की गैलरी का हिस्सा ढहने की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। ठाणे शहर, कल्याण, भिवंडी, उल्लासनगर, डोंबिवली और नवी मुंबई के कई निचले हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और कई इलाकों में फंस गए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवाणी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वो लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। अंत में खेल। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में राउंड 16 के मैच में पराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 70वें मिनट में पेनल्टी से मैच का एकमात्र गोल किया। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस। जी हाँ, मुंबई सिटी, वेलकम बैक। 12:03 हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा म्यूजिक कैफे और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। अक्सर स्लॉट में मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, लेकिन आज जैसे मुंबई का मौसम, मुंबई का मिजाज एकदम से पूरी तरह बदल गया है, इसी तरह हमारा भी शेड्यूल कुछ बदल गया। एनीवे, तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ शुरू करते हैं और आज इस स्लॉट में मैं रफ़ी साहब और किशोरदा के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: जी हाँ, मुंबई सिटी 12:14:16 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। मैंने आपको दो गाने सुनवाए और एक रफ़ी साहब की आवाज़ में था और एक किशोरदा की आवाज़ में। ये दोनों सिंगर्स हिंदी सिनेमा की बहुत बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं। दोनों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अगर रफ़ी साहब बेमिसाल थे तो किशोरदा भी लाजवाब थे। और ख़ास बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ऐसा कहा जाता है कि मीडिया ने इन दोनों के बीच में एक खास तरह की काल्पनिक प्रतिस्पर्धा बनाई थी, लेकिन दोनों उसे नज़रअंदाज किया करते थे और हमेशा एक दूसरे से बहुत अच्छा रिश्ता रखते थे और पूरी मोहब्बत के साथ मिलते थे। किशोरदा रफ़ी साहब को हमेशा अपना बड़ा भाई मानते थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ था तो किशोरदा उनके पैर पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए थे, फूट फूट कर रोए थे। तो पता चलता है कि दोनों के बीच में किस तरह की मोहब्बत थी, किस तरह का अपनापन था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं है मेरा, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके हैं, और एफएम रेनबो हर पल हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एनीवे, बात करें आज हम रफ़ी साहब और किशोरदा के कुछ चर्चित किस्सों की, कुछ उनके उनका रिश्ता कैसा था, उनके बीच में किस तरह की केमिस्ट्री थी। 1971 में एक फिल्म आई थी, फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्दे पर किशोरदा राजेश खन्ना की आवाज़ थे। इस फिल्म के सारे गाने किशोरदा ने गाए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक गाना ऐसा था जिसे किशोरदा ने खुद ही गाने से मना कर दिया। उन्होंने फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि ये गाना मैं नहीं गाऊँगा, आप ये गाना रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो इस गाने को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं। इस बात से पता चलता है कि किशोरदा कितने अच्छे इंसान थे और उन्हें संगीत की कितनी समझ थी। फिल्म थी हाथी मेरे साथी और गाना था नफरत की दुनिया को छोड़ के। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने किशोरदा ने गाए हैं, सिर्फ एक गाना रफ़ी साहब ने गाया है, और जिसे ये फैसला यानी ये किया था किशोरदा ने। तो सुनते हैं यही गीत।

0: खुश रहना।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हे मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। तो बात कर रहे हैं रफी साहब और किशोरदा के कुछ किस्सों की। तो चलिए, 1973 में एक फिल्म आई थी अभिमान। इस फिल्म में दोस्तों एक गाना है तेरी बिंदिया रे। फिल्म के संगीतकार SD बर्मन साहब और फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे कि इस गाने को किशोरदा गाएं, लेकिन अभिमान की कहानी का कुछ हिस्सा उनकी निजी जिंदगी से काफ़ी मिलता जुलता था और इस बात को लेकर किशोरदा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। और बस फिर ये गाना रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया।

जी हाँ दोस्तों, 12:41 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मैं आपके साथ रविन और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। तो चलिए बात करते हैं अगली चर्चा के बारे में। बात करते हैं, साल था 1972 और संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। वो एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते थे और बहुत कीन थे, मतलब पूरी तरह से वो मेंटली चाहते थे कि ये गाना रफ़ी साहब ही गाएं। लेकिन हुआ यूं कि रफ़ी साहब उस समय भारत में नहीं थे बल्कि विदेशी टूर पर थे और फिल्म के निर्माता जल्दी से जल्दी फिल्म को पूरा करके रिलीज़ करना चाहते थे। इसलिए संगीतकार ओपी नैयर साहब ने उस गाने को गाने के लिए किशोरदा को बुलाया और किशोरदा को बताया कि वैसे वो गाना रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें, और हम चाहते हैं कि अब आप इस गाने को रिकॉर्ड करें। किशोरदा ने कहा कि वो इस गाने को सिर्फ एक शर्त पर गाएंगे कि जब रफ़ी साहब भारत वापस आ जाएंगे तो हम दोनों इस गाने के लिए उनका आशीर्वाद लेंगे। पता चलता है कि किशोरदा और रफ़ी साहब के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री थी। दोस्तों, फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो और गाने के बोल थे तू औरों की क्यों हो गई। तो चलिए सुनते हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

मुंबई सिटी तुम बिन जाऊं कहां। बहुत ही प्यारा गीत रफी साहब की आवाज़ थी। और 12:50 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मैं रविन आपके साथ। तो चलिए आखिरी चर्चा इस स्लॉट की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1969 में फिल्म आई थी आराधना और फिल्म के संगीतकार थे एस डी बर्मन साहब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना और बर्मन दादा चाहते थे, गौर से सुनिएगा, कि बर्मन दादा चाहते थे कि राजेश खन्ना के सभी गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए जाएं। और उन्होंने दो गाने, पहला गाना था बागों में बहार है और दूसरा गाना था गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, ये दोनों गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए। लेकिन हुआ यूँ कि इसके बाद एस डी बर्मन साहब अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और फिल्म के बाकी गानों को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी उनके पुत्र यानी पंचमदा आर डी बर्मन साहब के कंधों पर आ गई। लेकिन आर डी बर्मन साहब ने बाकी तीनों गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं किए, बल्कि उन्होंने बाकी तीनों गाने किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किए। और बस किशोरदा के करियर का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए पर्दे पर राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए।

0: तो मत हमसे खुद से हम।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम होगा हिट एंड हॉट। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 1955 से लेकर 1975 तक के बीच की जो भी रिलीज फिल्में हैं उनके किसी भी गाने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हम गोल्डन इरा पर ही स्टिक करने वाले हैं और गोल्डन इरा अपने आप में लाजवाब है। तो कार्यक्रम खत्म करने से पहले इस स्लॉट का आखिरी गीत आपकी नज़र करता हूँ, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत, यानी हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, दिन हो या रात हम रहें आपके साथ।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम म्यूजिक कैफे खत्म होता है। आप सुन रहे थे FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर आपका अपना चैनल। मैं था आपके साथ आपका जिंदा दिल RJ।

0: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं यशस्वीपणे व्हीबीजी रामजी योजनेत रुपांतर झाल्याचं त्यांनी सांगितलं।
1: आज प्रथम मदर सैंक्शन हम जारी कर रहे हैं, लगभग 25,863 करोड़ रुपए की ये मदर सैंक्शन राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो।
0: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्यापासून इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Welcome back Mumbai. 1:05 और 56 सेकंड हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं 107.1 MHz पर अपना पसंदीदा चैनल FM Rainbow. जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम हिट एंड हॉट और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. जी हाँ, कि आपकी ख्वाहिश क्या है, यानी आपकी रिक्वेस्ट क्या है, आपकी फरमाइश क्या है. तो जो भी गाना आप रिक्वेस्ट करेंगे, यानी आज ऊपर वाला FM रेनबो के ज़रिए आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेगा. तो चलिए आगाज़ करते हैं. पहला गीत सुनना चाहती हैं माहिम से दीपा पालकर जी, और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र. आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की. बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत के ज़रिए मैं आपके लिए कुछ फूल भेज रहा हूँ.

जी हाँ दोस्तों, इस सुंदरता से भरे हुए गीत को सुनना चाहती थी अंधेरी से तनुजा शर्मा, और कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं मानखुर्द से प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे और प्राची शिंदे, लता जी की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, 1:23:26 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं 107.1 MHz पर कार्यक्रम हिट एंड हॉट, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविन चौहान। आप व्हाट्सएप के जरिए किसी भी गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इस प्यारे से गीत को जो था फिल्म चोरी चोरी से सुनना चाहती थी अंधेरी ईस्ट से अंजू, और इसी गाने की रिक्वेस्ट की थी अजमेर से लाली झा ने। और अगला गीत एक कह सकते हैं कि बिल्कुल रेयर सॉन्ग है, और इसकी रिक्वेस्ट की है प्रणीत सोंडावले ने।

जी हाँ, प्रणीत सोंडावले ने, और फिल्म का नाम है नई उम्र की नई फसल, और आवाज़ है रफ़ी साहब की। बहुत ही क्लासिक सॉन्ग है ये, तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। किसी को पसंद करना बड़ी बात नहीं, किसी को पसंद करना बड़ी बात नहीं, किसी की पसंद बन जाओ तो बस दिल की बात बने। एनीवे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार और ठीक 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। सुनते रहिए एफएम रेनबो। व्हाट्सएप के जरिए आप जो भी गाने सुनना चाहते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

वेलकम बैक मुंबई। 1:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर। कार्यक्रम के थोड़े से पल बचे हैं और कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। और इस स्लॉट का जो गीत है वो होगा, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, आवाज़ है रफ़ी साहब की। इस गीत को सुनना चाहते हैं दिलेश वंजारी भंडारा से, और इसी गीत की फरमाइश की है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप ने मुरादाबाद से, और ग्रांट रोड से हमारे बापू यानी फिरोज सिंगनपुरिया जी ने। तो आप सभी के लिए रफ़ी साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट आवर चल रहा है और आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गाने आप तक पहुंच रहे हैं। मैं रवीन आपके साथ और अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनना चाहती हैं खार से अरुणा और चेंबूर से चेंबूर गर्ल काजल कक्कड़ और उज्जैन से सुंदरी ठाकुर। तो आप सबकी पसंद पर आशा जी की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, काजल कक्कड़ जी ने हमें एक शायरी लिखकर भेजी है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। काजल जी, कहीं ये आपकी ज़िंदगी की कहानी तो नहीं? एनीवे, डोंट माइंड। और अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है, मेरे महबूब कयामत होगी। और इस गाने को सुनना चाहते हैं संजय दर्शन और दादर से बाबा और इंदौर से चंदना चौहान। तो आप सभी के लिए ये खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, कयामत तो होगी। जब इतने प्यारे प्यारे गाने होंगे तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर कयामत तो होगी। और आखिरी गीत पेश करने का वक्त आ गया है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। और ये गीत मैं अपने उन सभी लिसनर्स के लिए प्ले करना चाहता हूँ जिनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई है और ढेर सारी शिकायतें, शिकवे, नाराज़गी बाकी रह गई है। तो आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं प्ले कर रहा हूँ और गौर से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है क्योंकि आपके बिना ये महफिल अधूरी है। ये जो संगीत का कार्यक्रम है आपके बिना अधूरा है और आप हैं तो ये चल रहा है। तो इस महफिल में आप इसी तरह से शामिल हैं जैसा कि रफ़ी साहब ने इस गीत में एक्सप्रेस किया है, जाहिर किया है। तो चलिए इसी के साथ मैं रवीन आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहिए FM रेनबो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम हिट एंड हॉट खत्म होता है। ठीक 2 बजे सुनेंगे आप मिड डे न्यूज़। ये न्यूज़ अंग्रेजी भाषा में होगी, तो आइए प्रतीक्षा करते हैं मिड डे न्यूज़ की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम

0: के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: And greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का

0: संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। जनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल

107.1 के एफएम रेडियो पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है तन्मय और आप सुन रहे कार्यक्रम लव यू जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी से हम प्यार कर लें, उससे नफरत कर लें, लेकिन जिंदगी जो है वो ऐसी है जो कि हमें हर प्रकार के अनुभव देती है। मेरा नाम है तन्मय और आप सुन रहे इस कार्यक्रम को। 5 जुलाई साल 2026 रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है और भीगा सा मौसम है, बरसात की बूंदें हैं, कहीं बूंदें हो रही हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा बूटी बूटी बूंदें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है आज शनिवार? तो खैर नहीं, ख़त्म हो चुका है, क्यों शनिवार में मटका हूँ, रविवार का दिन है। और मैं हाल ही में कल बात कर रहा था किसी से, उन्होंने कहा कि भाई साल के 6 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये दूसरा पड़ाव शुरू होता है इस साल का, जो कि जुलाई से है, दिसंबर तक जाएगा। कुछ लोग इस मंथन करने में लगे हैं कि भाई क्या पाया क्या खोया। तो अगर आप भी ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि भाई 6 महीने में आपने इस साल में क्या कर लिया है और अगले 6 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, तो बस अच्छी चीज़ है, कभी कभार सोचना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यक्रम जो होंगे, बहुत सारे प्यार भरे गाने होने वाले हैं, तो आपको भी हमारे साथ बने

रहना है, ये पहला पड़ाव है लव यू जिंदगी का, उसके बाद फिर एक और पड़ाव होने वाला है, फिर हमारा तीसरा पड़ाव होने वाला है। तो वो कौन कौन से पड़ाव होंगे ये तो शायद आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं बहुत आसान है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, जी हाँ 8657661071, और हमारा स्टूडियो का नंबर है 4515413245154132, और हमारा मुंबई का कोड तो आप जानते हैं 022। तो चलिए साहब इस प्यार भरी शाम को हम और आगे बढ़ाते हैं, और रविवार के दिन अगर शाम को बहुत सारे प्यार भरे गाने हो, मौसम भीगा भीगा सा हो, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो क्या बात है।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: जी सर, फील मी हील मी. और ये ज़रूर मानना चाहिए कि जब भी बरसात की बूंदें गिरती हैं तो बड़ा मज़ा आता है. ये कुछ देखिए, कुछ ही हफ्ते पहले हम जो है इस तपती धूप के बारे में बात कर रहे थे, उमस पसीना, और फिर अचानक बारिश की पहली बूंद जब आती है तो हम सभी के चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है, और जिसे हम बहुत इंतज़ार कर रहे हों. और तभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि साहब बारिश की पहली बूंद, मिट्टी की खुशबू, और ऐसे मैसेजेस आने लगते हैं. और ये बात सही है कि हमें अच्छा तो लगता ही है. वो बात दूसरी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या कहीं आपको जाना होता है और आप नहीं जा पाते हैं, या आप कहीं रास्ते में हो और आप भीग जाते हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा सा अटपटा लगता है. लेकिन फिर भी जो है कोई भी चीज़ के दो रूप होते हैं, और उस वक्त जो है आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन जब आप घर में बालकनी में बैठते हैं या अपने खिड़की के पास बैठते हैं तो उस वक्त जो है बारिश बहुत अच्छी लगती है. मुंबई का जो है फिज़ाओं में कुछ अलग ही जादू है, क्योंकि जब भी आप सुबह खिड़की खोलते हैं या बालकनी में आप निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आसमान से धरती को प्यार से गले लगा लिया है. और ये बात सही है, कितना सुकून देती है बारिश. बारिश सिर्फ मौसम ही नहीं बदलती है, मुझे लगता है वो हमारा मूड भी बदल देती है. सड़कें वही रहती हैं, इमारतें वही रहती हैं, लेकिन नज़रिया कहीं ना कहीं हमारा बदल जाता है. और बारिश का अपना एक संगीत होता है. छत पर गिरती बूंदें, पेड़ों पर टपकता पानी, हवा की सरसराहट, और इन सभी के साथ जो है अगर ना आपका कोई मनपसंद गीत बज जाए या आपको बहुत प्यार भरा गाना सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है. ये भी आतिफ असलम की ही आवाज में है. यहां भी वो तेरा होने की बात कर रहे हैं. हर जगह प्यार ही प्यार.

आदि हो चुके होते हैं कि उसके बाद फिर बड़ा अलग रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि साहब जब चाय बनती है तो धीरे धीरे उसको पकने दीजिए, जब सब्ज़ी बनती है, जब खाना बनाया जाता है उसको भी धीरे धीरे ही पकाया जाता है और उसी से उसका स्वाद आता है। अब मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, काम ख़राब हो जाता है। अगर हमने कभी महसूस किया है कि बारिश सिर्फ जो है वो बाहर नहीं होती है, कई बार बारिश हमारे भीतर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है। बारिश में यादों में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि बचपन में स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, आज भी होती हैं और आज भी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ना बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए कि भाई आज तो स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी यार, बस नहीं आएगी, आज घर में रहना पड़ेगा। और स्कूल से लौटते वक्त कभी कभार जो है मुझे याद है कि जानबूझ कर जो है हम पानी में छपाक करते थे और अपने गड्ढों पर अपने पैर डालते थे और फिर घर में जाके डांट खाते थे कि भाई भीग के क्यों आए हो, रेनकोट और छाता क्यों नहीं यूज़ किया। तो उसे लगता है कि बस बारिश इतनी अच्छी, मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है आज भी कभी मौका मिले तो आप लोग को जो है बारिश में खुद जाके भीगना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि भाई अपनी तबीयत जो है आप ख़राब ना कर पाएँ। लेकिन ये कभी कभार की बात है। जो लोग जो है वैसे ही भीगते रहते हैं, दफ्तर जाते हुए, काम पर जाते हुए, बोलेंगे साहब अब इसमें भीगने की क्या ज़रूरत है, तो वैसे ही भीग जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और बारिश में जो है सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो किसी से पूछ लीजिए, वो क्या बोलेगा सब, गरम गरम पकौड़े या भुट्टा या अदरक वाली चाय, और साथ में पूरे परिवार के साथ बैठ के जो है आप इनके साथ बातें करते हैं। हकीकत ये हो चुकी है कि आज ज़िंदगी बहुत हमारी तेज़ हो गई, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो है रुकना सिखा देती है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो अधिकांश लोग जो है वो बस निकल जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए कि भाई आज हम लोनावला जाएंगे, कर्ज जाएंगे और बहुत सारी जगह जाएंगे। तो भाई आप लोग का क्या प्लान रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा। और लेकिन एक बात तो सही है कि पहाड़ियों में, वादियों में जब बरसात होती है तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है और मज़ा आ जाता है।

श्रेया घोषाल, अनुपम रॉय की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म पिकू. बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना और मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हाइपर एक्शन नहीं होता है, बहुत मेलोड्रामेटिक ऐसी कुछ नहीं होती, बहुत ही सिंपल सादगी वाली फिल्में लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे जाती हैं. तो इसका गाना मैंने आपको सुनवाया, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. और अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले भाई आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि बारिश कई बार जो है हमें थोड़ा सा थमना भी सिखाती है. और जब आप बारिश में कहीं आप किसी इंतज़ार कर रहे हो और आप कुछ कठिनाई करने को नहीं है, तो वो भी एक अलग ही जॉय होती है. थोड़ा धीमे चलना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा सा जी लेना भी बारिश जो है हमें सिखा देती है. बारिश जो है हमें कहीं ना कहीं बच्चा भी बना देती है. और कभी आप सोचिए कि आपकी सबसे खूबसूरत मेमोरीज जो हैं वो तब की कौन कौन सी हैं. जब बारिश की बात हो, सब चाय पकौड़े ये सब तो होता है, अदरक की चाय और पकौड़े की बात तो होती है, लेकिन साथ में जो है एक रोमांस की भी बात होती है. और ये दोनों का रिश्ता तो शायद सदियों पुराना है, फिल्मों में भी, कहानियों में भी और कविताओं में भी. बारिश आते ही दिल थोड़ा ज़्यादा धड़कने लगता है. एक छतरी में दो लोग, लंबी सड़क, हल्की हवा और बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ कह देने वाली वो खामोशी. शायद इसी वजह से इतने खूबसूरत प्रेम गीत जो है वो इस बारिश पे लिखे गए हैं. लेकिन सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं का ही ये बात नहीं है, बारिश जो है हमें अपने शहर से भी प्यार करा देती है. जी हाँ, आप देखिए शहर बहुत अलग लगने लगता है. अब कुछ लोग बोलेंगे साहब पानी वानी भरा होता है क्या अच्छा लगता है, तो अब ठीक है, ये भी एक नज़रिया है, ये भी एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कई बार आपको अच्छी चीज़ ही देखनी पड़ेगी और अपने घर से, अपने आप से और खुद से भी. कई लोग जो है बारिश में अकेले टहलना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सवालों के जवाब बारिश की बूंदें दे देती हैं. अगर आपके पास आज थोड़ा सा समय है, मोबाइल थोड़ा सा साइड रखिए, खिड़की के पास बैठिए, बालकनी में बैठिए, बारिश को देखिए और बस मुस्कुराइए. और अगर ना आप इस वक्त यही कर रहे हैं, तो आप ये बहुत प्यारा खूबसूरत गीत सुनिए आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की ही आवाज़ में. जब प्यार की बात हो और ये गाना हम ना एयर करें, ये तो हो ही नहीं सकता ना.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

मेरे मन ये बता रहे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है, मुझको बता मिथवा। जी हाँ, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन की आवाज़ में, और फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, कहते हैं कि अलविदा कहने से जो है वो मिलने की उम्मीद जो है छूट जाती है, इसलिए कभी अलविदा नहीं कहना चाहिए। आपको क्या मालूम कि भाई कब आपके जीवन में और कौन आ जाए, तुरंत ही इतने सालों के बाद कोई एकदम से आ जाए, क्या मालूम। ठीक है।

अब जहां तक बहुत सारी हम बरसात की बातें कर रहे थे, बहुत सारी रोमांटिक बातें कर रहे थे बरसात को लेके, लेकिन किसी शख्स ने कहा, हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, और एक शख्स ने बहुत अच्छी बात की कि देखिए साहब, बहुत अच्छा होता है ये रोमांस बरसात की बातों का करना, कि बहुत अच्छी लग रही है बरसात, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आप उसको अपनी बालकनी से या अपने आप खिड़की से ना देखें। द मोमेंट आपको अपने काम के लिए जाना होता है और बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कई बार मिल नहीं पाता है, पानी भरा होता है और फिर आपको ट्रेन में जाना पड़ता है, तब जो है यही बरसात जो है तकलीफ़ बन के रह जाती है। अब ये बात सही है कि साहब ये जो तकलीफ़ है वो तो है ही है, लेकिन हम सब जो है इन्हीं तकलीफ़ों को सामना करते रहते हैं आए दिन, और खुशी इस बात की होती है कि चलो यार इसको भी हमने निपटा लिया। जीवन में वैसे भी कष्ट बहुत सारे होते हैं, चलो एक और आ जाएगा, इसको भी निपटा लेंगे। जी हाँ, ये सब रहता ही है। और जब रोमांस की बात होती है, प्यार मोहब्बत की बात होती है, तो साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल की बात हो और दिल टूटने की बात ना हो। तो ये आप अगला गाना सुनिएगा, अरिजीत सिंह की आवाज़ में है और इसमें कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर मैं आपको पापॉन की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनवाने वाला हूँ, वो भी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि आपको एक गाना सुना, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर गीत संगीत के सफ़र को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम है तन्मय और आप सुन रहे कार्यक्रम लव यू जिंदगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 और हमारा स्टूडियो का नंबर है 4515413।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

हमने कभी सोचा है कि कुछ गाने हमें अच्छे क्यों लगते हैं और जिसको हम बार बार सुनना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं? उसकी मेलोडी होती है, म्यूज़िक तो होता ही होता है, लेकिन साथ में मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है जहाँ पे उसके लिरिक्स जो है वो कुछ ऐसी बातें बयां कर रहे होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होती हैं और आप उसको जो है महसूस कर पाते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये जो कहानी है या ये जो कहा जा रहा है ये तो मेरी ही दिल की बात है, ये मेरी ही कहानी है, और शायद इसीलिए जो है वो गाने आपको और पसंद आते हैं और बार बार आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपको एक और बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा गाना सुनवाते हैं। और हम अभी यही बात कर रहे थे, काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई बारिश जो है उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन यही बात है ना कि सब हम इंसान जो है आप क्या देखना चाहते हैं आपको वही देखें। अगर आपको अच्छाई देखनी है चाहे बारिश की हो या इंसानों में हो तो आपको अच्छाई दिखेगी, अगर आपको बुराई देखनी है तो आपको वही दिखेगी। इट ऑल बॉयल्स डाउन कि भाई आप क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल जो मेरे सामने मुझे देख रहा हूँ वो है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना, प्यार भरा गाना है। इस गाने को सुनिएगा एंड एंजॉय दिस वन, क्योंकि हम सब का मन जो है थोड़ा सा बावरा तो होता ही है ना।

नया साहब, अगर ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपना ध्यान रखिएगा, निकलने से पहले जान लीजिए कि भाई किस जगह कितनी बारिश हो सकती है, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पानी भरा हो वहाँ बिना देखे कदम ना रखें, अगर ना आप भीग गए हैं तो घर पहुँच के तुरंत सूखे कपड़े पहन लें। इस मौसम में सड़क फिसलन से भरी होती है, इसलिए अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलिएगा, वहाँ धीरे चलाइएगा, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, किसी भी बिजली के खंभे और तार को बिल्कुल ना छुएं, जहाँ तक संभव हो साफ और गर्म भोजन लें। इस वक्त बीमार पड़ने की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग जो है पानी पी लेते हैं जो कि साफ नहीं होता। छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। मौसम का मिजाज कब बदल सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बारिश का मजा भी लीजिए और अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि मुस्कुराते रहेंगे तभी तो यह मौसम आपको भी पसंद आएगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात, मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मतलब इस पड़ाव में खत्म करने से पहले जो है कि बारिश जो है हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि बादल जितना भी घना क्यों ना हो, बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। जिंदगी में भी मुश्किलें हमें छोड़ती नहीं हैं, थोड़ा धैर्य, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास हो तो यही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज बारिश हो रही है तो सिर्फ उसे मौसम मत समझिए, उसे महसूस कीजिए, उसकी खुशबू आपके अंदर उतरेगी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी, और अपना फ़ोन उठाइए और बस एक कप चाय लेके खिड़की के पास बैठ जाइए और उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आप बहुत समय से बात नहीं कर पाए हैं। एक खूबसूरत पल है जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उन पलों को हम सिर्फ जी सकते हैं इसी खूबसूरत एहसास के साथ। और जब बारिश आए तो अपना उसका दिल खोल के स्वागत कीजिए। आपकी सभी यादगार बारिश की यादें क्या हैं, ये आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है चाय पकौड़ा भुट्टा जो है वो सब बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। अगला गाना अमित मिश्रा की आवाज़ में जो कि इस पड़ाव का आखिरी गाना होगा, उसके बाद से 6 बजे के समाचार होंगे और फिर एक बार फिर से जो है हम अंदाज़े बयां कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मेरा नाम है तन्मय और इस गाने को सुनिए।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: जी हाँ, Musically Yours आप सुन रहे कार्यक्रम अंदाजे बयां, जो कि हमारे इस तीन घंटे का ये दूसरा पड़ाव है. मेरा नाम है तन्मय और वक्त हो चुका है 6:17 और 10 सेकंड और शाम के 7 बजे तक ये पड़ाव रहेगा. उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी बाद में देंगे. अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो 8657661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा स्टूडियो का नंबर है 4515412. और काफ़ी सारे दोस्त जो है हमें अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने विचार भेज रहे हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या करने का इरादा है, सभी भेज रहे हैं. जी हाँ, ये बात आज हम थोड़ी सी कर रहे हैं कि बरसात की बात कर रहे हैं, उनकी कुछ खास आपको प्यार भरे गाने हमने आपको पहले पड़ाव में सुनाए. ये बात सही है कि बरसात में जो है

वो ठंडी हवाएं, अलग मौसम का मिजाज, गरम गरम चाय और पकोड़े। किसी ने लिखा है कि भैया मूंग दाल के पकोड़े होने चाहिए। ठीक है सर, मैं अगली बार आपके लिए बनवा लूँगा मूंग दाल के पकोड़े और अदरक की गरम गरम चाय जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर ना उसमें थोड़ा सा जो है, थोड़ी सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गज़ल वज़ल भी हो जाए तो क्या बात है। तो चलिए आज आपको हम जगजीत सिंह और पंकज दास और बहुत सारे और लोग की आवाज़ में हम आपको गज़ल

फिल्म जॉगर्स पार्क से आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल सुनी है और उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है। और आज हम बात करें थोड़ी सी बारिश की। कभी छत

पर कभी खिड़की पर, कभी मन के किसी कोने में, बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती, लेकिन सुकून हमेशा हर किसी को दे जाती है। जिंदगी भी शायद ऐसी है, हर किसी की कहानी अलग है, लेकिन खुशियों की बारिश सबको अच्छी लगती है। पंकज उदास की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गजल।

0: बाकी सब गंगा।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जगजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा आपने गज़ल सुनी, और हम आपको तलत अज़ीज़ की भी आवाज़ में उमराव जान फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनवाने वाले हैं जो कि काफ़ी पसंद किया गया है। लेकिन एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मुझे लगता है कि आपको हम सुनवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियाँ जो हैं मेरे सामने रखी हुई हैं। एक बूंद गिरी और मिट्टी महक उठी, काश इंसान एक अच्छी बात सुनकर भी इतनी आसानी से महक जाए। बारिश में हमें एक बात तो सीखने को मिलती है, बादल जितना भी भारी हो उसको बरस कर हल्का ही होना पड़ता है। शायद इंसान को भी अपने मन की बातें जो हैं कभी कभी कह देनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर की जो बातें हैं, भावनाएं हैं, वो सब व्यक्त हो सके और थोड़ा सा हल्का महसूस कर सके। हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातें जो है अपने दिल में दबा के रखते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और शायद उसी से हम लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो बातें अपने किसी जानकार को, अपने किसी अच्छे सच्चे मित्र को आप बता देते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है राहत मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी और को भी मैंने अपनी बात शेयर की और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन तकलीफ तब हो जाती है जब आप अपने दिल की बात कहते हैं और वो बात बहुत दूर तक कहीं निकल जाती है।

0: गीतों पे दूर तलक जाए।
1: बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ना गलत लोग के हाथ लग जाएगी तब दिक्कत हो जाएगी। चार्ली चैपलिन साहब जो है वो बहुत मशहूर एक्टर हुआ करते थे किसी ज़माने में, और वो कॉमेडी जो है उन्होंने बहुत सारी की है, तो हमने बचपन में बहुत सारी उनकी फिल्में देखी हैं। और मुझे लगता है कि आज भी अगर ना किसी को एक्टिंग सीखनी है तो चार्ली चैपलिन की जो एक्टिंग है उससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। उनसे किसी ने कहा कि भाई आपको जो है ये बारिश का लगता है मौसम बहुत पसंद है, और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बारिश बहुत पसंद है और मैं अक्सर जो है वो टहलने निकल जाता हूँ बगैर किसी छाते के। तो उन्होंने कहा कि आपको इतनी पसंद है, तो बोलते नहीं बारिश का एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग मस्ती होती है, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मेरा एक और बहुत काम आसान कर देती है। जब मुझे रोना होता है तो मैं जाहिर सी बात है हर किसी के सामने नहीं रो सकता, लेकिन जब बारिश आता है तब जो है मैं वॉक करता हूँ और तब जो है जितना मुझे रोना होता है वो मैं रो लेता हूँ, क्योंकि दुनिया को तो यही लगता है कि वो मेरे चेहरे पे जो है वो आंसू नहीं बल्कि वो बारिश की बूंद है। और इसी तरीके से मैं अपनी उदासी भी जो है निकाल लेता हूँ, अपने आंसू बहा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता, सब सोचते रहते हैं कि मैं आज भी मुस्कुराता रहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुस्कुराहट के पीछे जो है बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तन्हाई होती है, बहुत अकेलापन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट लेके सबके साथ रहते हैं। कुछ रास्ते भीग गए हैं, कुछ ख्वाब धुल गए हैं, कुछ चेहरे याद आ गए हैं, कुछ कम भी भूल गए हैं। बारिश का यही कमाल है, जो चला गया उसकी याद दे जाती है और जो आने वाला है उसकी उम्मीद भी।

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि इस गाने को आपने पसंद किया होगा। और अगले गाने की तरफ जब हम बढ़ते हैं, अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे इस पड़ाव की आखिरी गज़ल होने वाली है, वो भी जगजीत सिंह की आवाज़ में है। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने चेहरे पर बस मुस्कुराहट रखते हैं ताकि दुनिया को नामालूम चले कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी तकलीफ़ें, उनका गम, उनकी परेशानियाँ क्या हैं। कुछ लोग सच में नहीं चाहते कि दूसरों के साथ अपना गम बांटें, क्योंकि अगर ना वो ऐसा करते हैं तो शायद दूसरे के चेहरे पर मायूसियत आ जाएगी। तो वो यही सोचते हैं कि क्यों हम अपना किसी को गम बांटें और क्यों किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट हम बहुत दूर ले चलेंगे। अगर कभी बारिश में किसी का हाथ थामने का मौका मिले तो छतरी छोटी ही रखना, क्योंकि कुछ दूरियां भीग कर भी कम हो जाती हैं। बारिश का मौसम जो होता है दिल में थोड़ा सा सब कुछ शायर सा बना देता है और यही इसकी खूबसूरती है और इसका एहसास जो है हमें आगे बढ़ाता है। और मैं ये कहूँगा कि बारिश जो है सबसे खूबसूरत बात उसकी ये है कि ये किसी से नहीं पूछती कि तुम अमीर हो या गरीब हो, खुश हो या उदास हो, वो बस बरसती रहती है और हर दिल अपना सा बना लेती है। इसी भीगे हुए एहसास के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत आपको हम गज़ल सुनवाते हैं जो कि हमारे इस पड़ाव का आखिरी गीत होगा। और उसके बाद फिर समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद जो है

आपको बता दें कि आज जो है कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, वो खास ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड T20 मैच वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल होगा जो कि लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, और 7:30 बजे से जो है आप उसकी आंखों देखा हाल यानी कि उसकी कॉमेंट्री सुन पाएंगे। तो 7:10 तक जो है हम कार्यक्रम हम तुम शुरू करेंगे, यानी कि 7 बजे से लेकर 7 बजे तक 10 तक हम समाचार सुनेंगे। उसके बाद फिर 7:10 से लेकर 7:30 बजे तक आप रेडियो में अगर ना मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सुनेंगे, और 7:30 बजे जो है आप फिर कमेंट्री सुनेंगे। जो लोग हमें मोबाइल और ऐप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हैं वो इस कार्यक्रम को सुनते रहेंगे, यानी कि 7:30 बजे भी आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए इस पड़ाव के आखिरी इस खूबसूरत नगमे के साथ हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कैफी आजमी के बहुत ही खूबसूरत बोल और फिल्म का नाम अर्थ।

जी हाँ, म्यूजिक लियो और 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, जहाँ पे हम हैं, आप हैं और बहुत सारे खूबसूरत गीत हैं। और होता ये है कि आप अपने कुछ पसंदीदा गाने जो है हमें भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके, और हमें चॉइस देते हैं और उनमें से जो है हम कुछ गाने जो है आपके लिए लगा लेते हैं जो कि आपको पसंद आता है, इस उम्मीद में कि वो गाने सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। 8657661071 हमारा जादुई व्हाट्सएप नंबर, इसके जरिए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 4515431 है। मेरा नाम है तन्मय और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जो कि दीपा पालकर जी सुनना चाहती हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। तो इस गाने को सुनिए और हम सभी सुनते हैं और पुरानी यादों में कहीं डूब जाते हैं।

मोहित चौहान की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत से आपने सुना, और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि सुनना चाहते हैं राकेश माथुर जी और फिल्म ग्राम बहुत लंबा है, गाना बहुत खूबसूरत है, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, इस गाने को सुनिए और एंजॉय दिस वन। इस गाने में शाहरुख खान के जो एक्सप्रेशंस थे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।

अरिजीत सिंह की आवाज में आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुना जो कि फिल्माया गया है शाहरुख खान पर, और क्या अदा है उनकी, उनके एक्सप्रेशंस इस गाने में वो बहुत ही खूबसूरत हैं, देखिएगा कभी ज़रूर। और पहला गाना जिस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया था वो आपको सुनवाया था जब वी मेट का, उसके बाद दूसरी फिल्म जो यही गाना है वो है व्हेन हैरी मेट सैली, यानी कि मुलाकात का समय हो चुका है। और जब मुलाकातों की बात होती है तो भाई जाहिर सी बात है दिल के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन अभी इसमें हवा का जिक्र हो रहा था तो मेरे जहन में ऐसी ख्याल आ रहा था कि हवा जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है जब आपके चेहरे पे हल्की हल्की हवा पड़ रही हो और आप आराम से इसको एंजॉय कर रहे हो और आपको वो ख्यालों की दुनिया में ले जा सकती है, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन अगर वही हवा बहुत तेज़ी से चलने लगे तो तूफान का रूप ले लेती है। तो हवा तो वही होती है लेकिन उसकी गति जो है निर्भर करती है कि वो आपको पसंद आती है नहीं आती है। तो वही है कि कई बार हमारे जो विचार होते हैं या जो हमारी वाणी होती है वो डिपेंड करता है कि भाई लोगों को हम पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। हम उसी मुख से बहुत खूबसूरत विचार व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के लिए और पसंद लोग हमें करते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि उसी मुख से जो है हम ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों की नज़र में गिर जाते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में पल पल दिल के पास हम आपको गाना सुनवाने वाले हैं, और ये रिक्वेस्ट किया था हमें फिरोज सिगनपुरिया साहब, तो इस गाने को एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर हम और भी आपको गाने सुनवाने वाले हैं।

जी हाँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो और ना वो रहती हैं, तो प्लीज़ उनका अच्छा सा ख्याल रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। वक्त हो चुका है जहाँ मैं आपको बताऊं कि बस कुछ ही देर में, यानी कि अब से 1.5 मिनट बाद जो है, आपको बता दें कि आज T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और ये फाइनल लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। 7:30 बजे से जो है प्रसारण होगा, जहाँ पर आपको आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा, यानी कि कॉमेंट्री होगी और आप जो है इस कॉमेंट्री को इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस शो में जो है, इस रेडियो, अगर आप रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप कॉमेंट्री सुन पाएंगे, और अगर आप इंटरनेट और मोबाइल ऐप के थ्रू सुन रहे हैं तो मेरे इस कार्यक्रम को आप सुनते रहेंगे। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और आप सुनना चाहते हैं अगला गाना। मैं अपनी राइटिंग ही खुद पहचान नहीं पाता कई बार सीरियसली नहीं, मुझे मालूम चल गया। पंकज मोहडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हितेंद्र दास, जो कि हमें आसाम से लिख रहे हैं, वो भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। के सुनिधि चौहान की आवाज़ में है, इस गाने को सुनिएगा और मुस्कुराते रहिए, इन्जॉय करते रहिएगा। मेरा नाम है तन्मय, हमारा कार्यक्रम जो है, जहाँ पर आप इस कार्यक्रम में अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और हमें कॉल्स के माध्यम से अपने कुछ रिक्वेस्ट हमें बता रहे हैं, कुछ वो गाने जो आप सुनना चाहते हैं, और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उन गीतों को आप तक पहुँचा

8657661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071. और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे.

Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

फिल्म खट्टा मीठा से आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुना के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं अजय, जो कि इंदौर से हमें लिख रहे हैं और वो दिल चाहता है का ये गाना चाहते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो एक गाना सुने। तो चलिए इस गाने को सुनिए एंड एन्जॉय दिस वन।

फिल्म दिल चाहता से आपने बहुत ही खूबसूरत से गाना सुना, और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि सुनना चाहते हैं सुशील यादव और परिणीता फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और मैं काफ़ी सारे मैसेजेस देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि यहां पे जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और कई बार जो है ऐसा होता है कि जहाँ पे हम आपकी रिक्वेस्ट को एयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ बड़ा सिंपल है कि हम कोशिश करते हैं कि जितने से ज़्यादा हम लोग आप लोग की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें उतना कर पाएँ, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो इस बात का भी आपको ज्ञात होना चाहिए। और मैंने सोचा कि इस बारे में आपको बता दूँ ताकि कोई शंका नाराज़गी ये सब कुछ ना रहे। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में है, इन्जॉय दिस वन। और काफ़ी सारे और दोस्त हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, और राजेंद्र पवार, सुनील गायकवाड़ पुणे से, श्रीधरन विद्या विहार ईस्ट से, दादर से बाबा, कोल्हापुर से रघुनाथ जी, संजय पाटिल, अंकित ने भी मैसेज किया है, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें याद कर रही थी, राम प्रजापति जी, रजनीकांत पाटिल, संजय दर्शन, दिग्दर्शन और कविता मेरठ से याद कर रहे हैं, कीर्तन पुरी गोस्वामी जो कि नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से ही जो है बालकरण वर्मा जी, अंजलि ज्योति, प्रहलाद बंटी और बबली, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ से ही मैं याद कर रहे हैं, हिरमानी वर्मा जी और दत्ता केदार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गाने को सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा, आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम।

जया फिल्म हम तुम से आपने गाना सुना और इस कार्यक्रम का नाम भी हम तुम। और अब आ चुके हैं जहां पे हम आपके लिए आज की आखिरी फरमाइश को एयर करने वाले हैं, जो कि सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त कहाँ है ना, मैं खुद ही भूल गया, विजेंद्र घटोल जी अकोला से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आपकी अगली मुलाकात जो है वो जल्दी होगी, लेकिन जब भी होगी बहुत सारी खूबसूरत गीतों के साथ होगी। मेरा नाम है तन्मय और बस मुस्कुराते रहिएगा। मेरे बाद जो है कार्यक्रम 8 बजे से शुरू होगा, वो होगा रॉक विद जॉक विद्या सागर के साथ, जो कि पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम, उसको सुनिएगा। मुस्कुराते रहिएगा, हंसना हसाना जीवन के दो रंग हैं, तीसरे का पता नहीं। और जब भी कभी आपको लगे कि भाई कुछ चीज़ें जो है ज़िंदगी में सही नहीं जा रही हैं, तो यकीन मानिए उसको सही करने का जिम्मा आप ही ले सकते हैं और आप ही सही कर सकते हैं। किसी दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहिए। मुस्कुराते रहिए, बरसात को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। मेरा नाम है तन्मय। ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधान

0: प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का

0: आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार

0: और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Balls to come into 16. Eccleston bowls and Perry drives. Little bit of a misfield at mid-on. Will not result in an extra run. Just the one run. 140 for two now. 11 runs required. And the last ball of the 16th coming up from Eccleston. Ellis Perry wears the helmet, which is faded to a light green. Eccleston bowls. And this one struck her on the pad. This could be close. The umpire is not moved. There's a big appeal from Eccleston. Amy Jones having a word. They're thinking about it. Well, Nat Siva-Brunt has gone upstairs. And why not? Because they've got nothing to lose at this stage taking a review. 140 for two it is, as the third umpire now will review where things have gone. And we'll wait and watch. Here's the replay. This could be tight, Vineet. It looks like it might well be umpire's call if the ball hasn't touched the bat. I think Mooney knows that she hasn't hit the ball. The expression on her face seems to suggest that. The replay is on and we have to wait and see what the umpire's decision is going to be. 140 for two. Will she go to ultra edge? Probably will.
3: पहले अंपायर को यही चेक करना है कि बैट से लगी है या नहीं लगी है, और उसी को उस इस समय अलग अलग एंगल से देखकर प्रयास कर रही हैं जानने का, और अल्ट्रा एज देखी जाएगी कि क्योंकि बैट के काफ़ी करीब थी गेंद, स्प्लिट फ्रेम में भी ये तय नहीं हो पाया और अल्ट्रा एज की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ समय लगता है ये देखने के लिए कि अगर एज है तो फिर LBW नहीं हो सकती क्योंकि बैट पहले टकराया था। अपनी इनिंग्स को पेस करती इंग्लैंड, सबको अवसर भी नहीं मिला बैटिंग का। बैट के करीब गेंद आएगी अभी, और क्या उस पर डिविएशन है? ऐसा नहीं लगता कोई डिविएशन है। तब तक पैड पे पहुंच चुकी थी, तब अल्ट्रा में कोई डिविएशन नज़र आ रहा है तो बैट पे तो नहीं लगी। अब बॉल ट्रैकिंग पे दारमोदार है।
2: अंपायर्स कॉल कुड बी लाइकली बिकॉज दिस वाज फायर्ड इन बाय एकलस्टन। But she seemed very, very confident. Once the ball tracking comes on, we'll know. Everything running in slow motion, anticipation on everybody's face, and I think

0: in their heart of hearts, everybody knows it's going to make no difference really to the result. The question is, will Mooney have to depart or will she continue? Three, four frames on our monitors here. Nat Siverbrunt, the England captain, Beth Mooney, the Australian batter against whom the appeal is, and the split frame of the third umpire's view. But this is taking far too long. As has often become the case now in international cricket, technology, but quick decisions is not something that technology is delivering, one has to say, except when it comes to the new ball. Now this will tell us, it's pitching in line, one red, two reds, three reds, means Beth Mooney has to depart. 16 overs have been completed, it's 140 for three.
1: Achha. रेफरल लिया अंपायर ने नॉट आउट दिया था पर ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही हो क्योंकि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो बेथ मूनी खेल रही थी बेहतरीन पारी 49 गेंदों पे 64 रन 10 चौकों की मदद से एकलस्टोन की गेंद पर LBW आउट हुई बेथ मूनी और बहुत संभावना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच साबित होंगी 140 पर ये तीसरा विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ एक तरफा हो गया मैच लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना इट गेट्स ऑन योर नर्व्स इतना आसान नहीं होता क्रिकेट के जानकार वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नजर आप पर होती है ड्रेसिंग रूम ऊपर है आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए एशले गार्डनर क्या खिलाड़ी हैं इन पे आप भरोसा कर सकते हैं स्मिथ बॉलिंग करेंगी सामने है पेरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं की आज मिडलर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है हालांकि वो रेफरल में काफी समय जाया हुआ गेंद काफी फुल लेंथ की थी अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चार रन
2: ये लगा आभा का चौका
1: अब केवल 7 रन चाहिए एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी अगली गेंद को फिर उठाकर खेला फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लो जैसे बढ़ रही है विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का पेरी ड्राइव कर रहे थे अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर दायरे के अंदर वो कैच हुई
0: गुड कैच बाय एकलस्टन देयर was travelling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
1: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी नो कैच एकलस्टन द्वारा सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है रेफरल्स में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या ना लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया जो हमारे अनुभव

0: में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टोन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही है, डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
1: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टोन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए, और वो है किम कॉटन, कोई मामूली अंपायर नहीं है।
1: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ टू डायमेंशनल इमेज, यू नेवर कैन गेट अ थ्री डायमेंशनल इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम। It cannot lead the game, in my opinion, but who cares?
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है, उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
1: Sorry, Vineet, you know, in the earlier days, before that rule was abolished, there used to be a soft signal from the umpire. I think that was a better way, because then you needed conclusive evidence to overturn the umpire's soft signal. But that is no longer the rule.
0: And when the soft signal was given, it was in the eyes of the cover, that what is the soft signal? You're sending it up. तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, आईसीसी नियमों में बदलाव करती चली जाती है, बहुत सी चीजें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नजरिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 तीन विकेट पर।
1: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13. Ash Gardner is on 1. And of course, that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Feeble Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield. Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority. And now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston, who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. One 46 for 3, 17 overs, lofted over, pulled back in, dragged back in probably is a better way of putting it, limits the scoring to 2, Gardner goes to 3 and the total now 148 for 3, 2 to tie, 3 to win, 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia and the celebration. Eccleston ball swept, this one's running down to the boundary, this could be it. 4 runs and Australia have won. So,
2: ये लगा आभा का चौका.
1: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their 7th title is theirs.
0: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया, दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पर अटैक किया, धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया

0: 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी। आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
1: प्लेयर ऑफ द मैच

0: right, so finally history is made, and as we always saying that this was England's ground, but now Australia has a stamp of it. Seventh time champion Australia has won the World Cup 2026 ICC Women's, and this is actually a lovely moment for all the cricket lovers. This was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं. चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा, ये फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं. बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को.
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ. देखिए, आपने मैच खत्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को ख़त्म कर दिया. तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180, आप सोचिए 180 रन होते तो यहाँ पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं.
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूंगा. मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई.
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी.
1: ओके, इंडिया. ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही थी.
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही
1: थी. नॉट बैड.
0: एंड चेतन, एक्चुअली I was also talking to you when we were sitting in the green room. When Australia won the toss, if hypothetically, if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely, they would have. जैसे उनकी बल्लेबाजी 190 रन तो जरूर बनते हैं, जो 186 की बार बार बात कर रहे थे ना गीतांजलि, वो आज रिकॉर्ड तोड़ते, बिकॉज दे गॉट ए पावर.
0: यस,
2: एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ये बिलीव कर रहा था कि इंग्लैंड के स्पिनर्स काफी हद तक कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर. मुझे नहीं लगता आज, ठीक है उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन रन भी ठीक ठाक थे. मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं. उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे.
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूंगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी तोड़े से भाई टूटे ना
4: जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मूवमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं. और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मूवमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा गया लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा. और फीबी लिचफील्ड की जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मूवमेंट था, और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है. बेथ मुनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता.
0: श्योर, हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी. मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे. नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085. अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे, 011 लगाना बहुत ही जरूरी है. क्या बात होती है हमेशा जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फर्म क्वेश्चन हैं. कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को. अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे, हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और 5 मैच जीती आई है. एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है, क्या हो जाता है जब इतनी

0: ज्यादा नोन कंडीशन पे आप खेल रहे हैं, उसके बावजूद काफी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस।
1: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो। आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना। एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग, जो भी आपका पार्ट है,

0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का. नमस्कार.
1: हाँ नमस्कार मैडम
0: जी. नाम बताइए अपना.
1: मैं महाराष्ट्र अकोला से सचिनपुरी बात कर रहा हूँ.
0: जी सचिन. अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सचिन. क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप.
1: मुझे इतना सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अटैक है वो इंग्लैंड के पास वैसा अटैक नहीं था क्या. इंग्लैंड की कहाँ से गलती हो गई क्योंकि पहले छह ओवर में 62 रन और एक ही विकेट था उनका.
0: जी
1: तो इंग्लैंड की बल्ले गेंदबाजों से कहाँ गलती हुई और इंग्लैंड के पास 180-185 रन का टारगेट होना चाहिए था.
0: जी बिल्कुल. ये टारगेट तो हम काफी टाइम से बात डिस्कस कर रहे हैं. अगर इतना टारगेट होता तो अभी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी. चेतन जैसा हमने कहा हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो कॉल करेंगे. बहुत सारी एनालिसिस हमसे एक्सपेक्ट करेंगे. आई थिंक राइट ऑफ द बैट आपसे डायरेक्टली मैं पूछ लेती हूँ. इससे पहले बहुत सारे और कॉलर्स पूछें. दोनों टीम्स में से क्या क्या पर्टिकुलर असेसमेंट आपके हिसाब से बेहतर की जा सकती थी खासकर अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें.
2: देखिए गीतांजलि सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या थी कि आपने पार्टनरशिप पनपने दी. पहली विकेट आपने जल्दी आउट करने के बाद दूसरे विकेट की साझेदारी 100 रन की थी. देखिए जब 150 रन टोटल आपका बोर्ड पे और आप 100 रन की साझेदारी पनप देने देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी. रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे. और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का. वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली. मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए. उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं. और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे वो डेफिनेटली वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए.
0: चेतन बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर सेव आउट फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी. ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में. आपको लगता है देयर वाज यू नो
2: ऐसा दिखा नहीं मुझे या कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई. कुछ गेंदें जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था. एंड देन सबसे बड़ी बात क्या ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को. देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की उन्होंने कंटिन्यू रखी. उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे. हाँ इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे एंड दे फिनिश्ड इन 17.1. दैट्स अ ग्रेट थिंग.
3: तो मोना आपसे जानना चाहूंगा आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं.
4: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है अक्रॉस द गेम्स. आप क्रिकेट हो हॉकी हो किसी भी खेल में आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी. तो एक माइंडसेट है मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना और वो तो हर टीम करती है लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है और मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है. अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 11 वाइड बॉल दे रहे हो मतलब 2 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं. और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं हावी हो गया क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती.
3: जैसा कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद द वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं ग्राउंड पे. अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं. वैशाली ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या खास बात है आपकी जुबानी.
5: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है जो आपने प्रैक्टिस करी है वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम

0: को दे सकते हैं और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर. एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं. एक टीम वर्क है यहाँ पे. तो ये ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है.
1: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर्स से भरी हुई है. तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, तो ऐसी टीम को आप बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम.
2: जी बिल्कुल.
3: और जो डिस्कशन होगा ना अभी मैच के बाद, कहते हैं ना रिव्यू होता है, आप वर्ल्ड कप हारे क्यों. जैसे अभी मोना बात कर रहे थे कि आपने 11 व्हाइट बॉल्स और एक नो बॉल, और वो जो 4 रन 22 के आए हैं वो नो बॉल के ऊपर आए थे, तो इसका मतलब आपने 16 रन एक्स्ट्रा दिए हैं. और आपने 11 व्हाइट्स और एक नो बॉल, तो आपने 12 गेंदे एक्स्ट्रा डाली हैं. तो 12 गेंदे एक्स्ट्रा डालने का मतलब ये हो गया 2 ओवर. तो अगर आप कैलकुलेशन करें इस समय मनीष, 17.1 ओवर, 2 ओवर 7 मिला लीजिए, 19.1 ओवर, और रन्स आप माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इंग्लैंड ये 150 में भी मैच जीतता था अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स और एक्स्ट्रा गेंदे ना की होती.
4: और आपकी बात को थोड़ा सा और पुख्ता करता हूँ, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है. तो एक रील आई मेरे पास इंस्टा में, तो भारत की टीम के एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और 2 विकेट वो ले गए. आप लोग जानना चाहेंगे वो फास्ट बॉलर कौन थे?
0: बिल्कुल बताएं.
4: आपकी बाईं तरफ बैठे.
2: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जितनी हम शेयर कर सकें या उनसे जान पाएं. चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी. उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नजर आती है?
3: देखिए, बहुत अच्छी टीम है. अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नजर आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर, आपने 4 मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया. इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर. आप 15 के 15 प्लेयर्स 4 मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं. तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था. इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. अदरवाइज आप देखिए, यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है. यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए. तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की जरूरत है. देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का. मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के ही आइए. देखिए, दूसरी टीम जो आई है वो भी लड़ने आई है, वो भी लड़ाई करेंगी. लेकिन जो मैंने अभी बात की गीतांजलि, कि आप इतने बदलाव टीम में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि समस्या आई तो कहाँ आई, वो आगे गलतियां ना हो, उस पे हम कैसे सुधार करें. उस सुधार की बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना देखिए क्रिकेट की फैसिलिटीज बीसीसीआई ने आज के समय में हमारे प्लेयर्स को दे रखी है, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी फैसिलिटीज है. आप एक सीईओ जाकर आइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, आपको लगेगा नहीं आप इस कंट्री में है, आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया. मतलब वो फैसिलिटीज, मैं कहता हूँ मैं गया रिसेंटली, और लक्ष्मण को मैं यही कह रहा था, लक्ष्मण इज डायरेक्टर देयर, वीवीएस लक्ष्मण, कि हमारे जमाने में 50% ये फैसिलिटीज होती ना, मेरे 5 से 7 साल क्रिकेट और बढ़ जाती. ये बीसीसीआई ने किया हमारे प्लेयर्स के लिए. आपको उस जगह से हिलने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्लेयर बनना है. तो देखिए, कुछ चीजें जो हुई है गड़बड़, उन पे सुधार जल्द होगा, हमें नजर आएगा. बट अदरवाइज वी आर डूइंग वेल, देयर इज नथिंग टू वरी,
2: नथिंग टू वरी. तो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, नंबर वही है 2342108 4, 2342108 5. और किसी भी तरीके से कोई टेंशन लिए बिना आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करें, मोना पार्था सारथी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, चेतन शर्मा फॉर्म इंडियन क्रिकेटर, वैशाली माथुर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ हैं, और मैं हूं गीतांजलि सोनी. मेरे साथ है मुनीश चौली, और बहुत ही जल्द प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी आपको सुनवाने वाले हैं. जी, तो आइए सुनते हैं.
5: So look, 64 of just 49 balls with 10 boundaries in there. We need to get a mic to Beth at some point. There you go. You seem to like finals, don't you? You seem to step up.
6: Yeah, just happy to be here.

0: ट्रेंड्स के खिलाफ काफी दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है, कई फाइनल खेल चुकी है, तो उनके लिए क्या कहा जाए, सोने पे सुहागा है कि एक जीत और?
1: जी बिल्कुल, और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर स्टूडियो में आते रहते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नमस्ते।
2: हेलो, नमस्ते
1: जी, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं दिल्ली से।
1: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं
2: जी आपको? भी भाई पर, और मेरे दो सवाल जी। और एक सवाल तो ये जो होती है या और भी है ना
1: जी, अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज़ हम सब सुन पाएंगे अच्छे से। बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में, जीत के बारे में, और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं। वैशाली, चूँकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस क्रिकेटर्स की होनी चाहिए, आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की, और बार बार हम यही बात मानते हैं, जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें, बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है, बट आज देखिए उनका जो रन है, 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने, तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है, और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, उसके बावजूद कैसे, समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज।
3: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है। तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर। आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना, वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है।
4: राइट, देन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं शायद, आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है।
2: हेलो,
4: हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले।
2: जी सर, मैं कर रहा हूं दिल्ली।
4: जी आपकी आपकी तरफ से ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज़ आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड, और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085। चेतन भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हों, लेकिन श्री चरनी टॉप विकेट टेकर हैं, 14 विकेट्स लेकर, मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर, लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ। ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चौके अगर देखे जाएँ तो स्मृति मांधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा, मैं चाहूँगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें।
5: देखिए, सबसे बड़ी बात चरनी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की, आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए। और चरनी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाएँ। और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही, अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं। स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है, हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला, देखिए खो जाता है कभी कभी वर्ल्ड

0: के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहां पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है। वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नजर आएंगे, जब आप कंबाइन चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीजन था कि आपने 1 मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए और 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ।
1: और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज हम तक पहुंचे। हेलो,
2: आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ।
1: वेंकट सर, कैसे हैं आप?
2: जिला सूर्यपेट तेलंगाना से।
1: जी वेंकट, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है।
0: जी बताइए।
2: नमस्कार, पहले
0: नमस्कार जी।
2: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। हमारी टीम मेन्स हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉट्स अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट्स खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपसे।
0: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे, रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आवर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले 2 साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है। ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
1: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये जरूर मोना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
3: देखिए, T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है। लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
1: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
3: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगी कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है, इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है। तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का

0: तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पर उतरता।
1: वेरी ट्रू।
2: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
3: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ, एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहां पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है। तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते। हाँ
1: जी, बिकॉज़ चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफ़ी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज़्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है बिकॉज दे एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं।
4: तो देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया, या मीडिया को कोई चीज़ अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीज़ें जो चल रही होती है मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेशनल सेलेक्टर्स, तो 90% चीज़ें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती, जो अंदर चीज़ें हैं, तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज़ चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज़ चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज़ तो मालूम ही नहीं है, और ना ही कभी वो ज़िंदगी में बाहर आएगी, और क्या है क्या नहीं है, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज़ ए लीडर, शी इज़ नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड ए साइड, एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है, वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है, हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे, और वो बने ओनली 4 कैप्टन इन सो मेनी ईयर्स, तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में, दुख लगता है। देखिए, बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है, हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहे नहीं वो अच्छे नहीं खेल रहे, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी इंडिया हार की, नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन्ट इट, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप, एंड दैट शुड कम इन आवर फैंस, कि नहीं अच्छा है ठीक है, हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, एंड यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स, दैट्स इट।
2: Right, then, याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, और ये डिस्कशन जो है ये विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है, 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया, 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे

0: वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे, 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं।
1: हेलो हेलो
0: राइट देन आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली, बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनके बन गए मेरे ख्याल से, उससे बेहतर कर तो सकती हैं, लेकिन यादगार वो रहा। श्री चरणी भी 4 for 19, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बॉलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बॉलर्स के लिए।
2: बिल्कुल, और राधा राधा यादव भी है, आप शायद ऐड करना भूल गए, उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट। एंड वहां पर दीप्ति शर्मा ने, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी। तो यहाँ पर दिखाता है कि आप, जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ। एंड अगर हम, मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है, दोनों यंग प्लेयर्स हैं। तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहां से वो उनको गेन करना भी बहुत जरूरी है।
1: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज, और यू बीइंग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल। कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
3: देखिए, ऐसी तो बहुत सारी है। जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी। मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी, और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की, उस तरीके की वो शॉट लगाती थी, और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ आपकी सामने आने लगती है और बहुत मोटिवेशन। अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए। तो कहां, हमने सफलता हम सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
1: आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलर्स हैं, वो अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो,
4: नमस्कार सर। मैम
1: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
4: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण से।
1: जी आकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
4: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब होता है सर, उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है, इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
1: जी एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज मैं चेतन जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा, आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं, इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट, व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम इन, दे कांट रियली अफोर्ड मच, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू टेल देम?
5: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा। अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है। देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना, वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है।

0: तभी तो कहते हैं ना हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है। तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता, और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर बच्चा खेल सकता है, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज़्यादा समस्या है कहीं भी। अगर अच्छा क्रिकेटर है उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है, उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं। देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सिलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री, लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है,
1: मैमथ टास्क।
0: या तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहाँ आपको मिलती है। इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जब से ये तीन तीन टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ तीन टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ, और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच कि पता करना कौन से लड़के में वो हुनर है, वो उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते कोचेस, तो पकड़ के रखते हैं उनको।
1: चेतन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ ऐसे प्लेयर्स कहीं भी मिले तो वी विल ट्राई एंड पास ऑन द मैसेज टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द क्रिकेट अकेडमीज। इवन हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अकेडमीज चलाते हैं कि ये लड़का अच्छा है इसको रख लीजिए, बिकॉज मैं तभी कहना अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं छोड़ेगा, और वो मैटर ही नहीं करता कि उस बच्चे के पास पैसे हैं कि नहीं है।
1: That's great to hear.
2: Right then, player of the match, ये डिस्कशन आप सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विजय ट्रॉफी पकड़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को, जो बन गई है वर्ल्ड चैंपियंस और सातवीं बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 और अब 2026 में वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जब चर्चा चली चुकी है तो वैशाली मोना आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लिश विलो, चेतन भाई तो बता ही देंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विलो जो लकड़ी है वो आती है इंग्लैंड से, पूरे वर्ल्ड ओवर में चेतन भाई वो विलो जो है फैलती रहती है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बल्ले अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स जो हैं वो उन बल्लों को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं। वैशाली सबसे पहले आप।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि एक बैट के अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कैसे स्ट्रोक्स हैं, एंड उसको अगर हम जब टैप करते हैं बॉल तो वो कितना आपको बैट पे बाउंस देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट को चेक करना और आपका आपके हिसाब से उसका बैलेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर का बैलेंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, एंड उसके साथ उनका जो बैट का वेट होता है, हर प्लेयर का बैट का वेट अलग अलग होता है, तो वो एक, और वहाँ पर वो कौन से बैट के साथ कम्फर्टेबल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए, तो ये मैटर करता है। एंड इट्स गुड कि अभी आजकल काफ़ी अच्छे इंग्लिश विलो बैट आ गए हैं, तो आप भी यूज़ करो।
2: इंडिया आते हैं और वहां से फिर इंग्लैंड जाते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं। मोना, आर यू सरप्राइज्ड?
4: नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई है उसमें मेजर जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि भारत में खेल साजो सामान निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इतना सारा वो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस है। और मुझे लगता है कि अभी पीछे एक सम्मेलन भी हुआ था स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो शायद मेरठ के बल्ले तो पहले से बहुत फेमस है, कश्मीर विलो, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि अब विदेशी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी खेलों में जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा।
0: जो आपने बात की मोना जी, मैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इंडिया का वर्ल्ड में आई थिंक सो नंबर वन है, मतलब जिस तरह के आप, इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट तो है ही उसके साथ

0: आप फुटबॉल की बात करें, आप
1: जी
0: मतलब जलंधर एंड मेरठ आर द टू प्लेसेस जहां पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, और भी होती होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हमारा क्रिकेट में मनीष बेसिकली वी टॉक अबाउट जलंधर एज वेल एज मेरठ। तो बट जब हम इन फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे फुटबॉल्स बन रही हैं, जिस अमाउंट में हॉकीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स आप किसी कंट्री में, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूं, आई कीप गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह पर इंडियन इक्विपमेंट नजर आता है, पैड्स, ग्लव्स, जो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, बैट को आप थोड़ा साइड पे रख दे, वो तो मतलब मैसिव है इंडिया का जो मार्केट है, एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि जो चीज़ें हैं वो जब हम जाकर देखते हैं कि भारतीय कंपनीज की इस्तेमाल होती है वर्ल्ड वाइड, इट्स अमेजिंग। और वो आपका ना दिल को बड़े सुकून मिलता है, मज़ा आता है देख कर कि आज हमारी वो इक्विपमेंट जो हमारे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था ना मनीष, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था स्पोर्ट्स, मतलब था, अगर मैं थाई पैड की बात करूँ, चेस गार्ड की बात करूँ, उस समय हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, और आज देखिए हमारे देश से हर चीज़, हर वर्ल्ड के हर कोने में वो इक्विपमेंट सप्लाई हो रही है। तो इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली प्लेजेंट फॉर आईज, है ना, जब हम जाते हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह, मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करूं, इंडियन इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड।
1: एंड यू नो, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि क्रिकेट एक रिलीजन है, खासकर हमारे भारत में, और बहुत पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को। और जैसा हम पहले कहते थे, चेतन आप भी बोल रहे थे बार बार कि लोगों को एक थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी भी होती, तभी बी विद योर टीम टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड नॉट पुल देम डाउन। बिकॉज जब हम इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं ना, तो ये बात भी आती है जब क्रिकेटर्स को पता चलता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक ये भी चेतन डर रहता है ना कि हो सकता है टीम से ड्रॉप ना कर दें, उतनी सिक्योरिटी दी जाती है उनको।
0: बिल्कुल गीतांजलि, क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी गुड टू ए लिमिट, मतलब ये नहीं कि आप पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए कि किसी के, ठीक है। देखिए अगर आप खराब खेलेंगे, आपका क्रिटिसिज्म बनता है। इवन हम जब कमेंट्री करते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं, हम भी तो बात करते हैं ना, किसी ने खराब शॉट खेला और उसकी वजह से आप मैच हार गए, तो यू क्रिटिसाइज, यू जस्ट स्टे टू द क्रिकेट ओनली। जब देखिए फैंस हैं तो हर चीज है, हम फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, बट जब वो क्रिकेट एंड क्रिकेट के बाहर चीजें चले जाती है ना, वो दुख लगती है। आप क्रिकेट की बात क्रिकेट तक सीमित रखे, उसने खराब शॉट खेला, उसने खराब गेंदबाजी की, खराब फील्डिंग की, एक्सेप्टेड, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट, दैट हर्ट्स, दैट्स इट।
2: और मैं समझ सकता हूं कि मध्य रात्रि हमारे भारतीय समय के अनुसार हो चुकी है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कब ट्रॉफीज जो हैं वो दी जाएं ऑस्ट्रेलिया को, विनिंग ट्रॉफी, इंग्लैंड रनर्स अप रही अपने ही घर में, लॉर्ड्स जो गढ़ है क्रिकेट का, कहा जाता है कि अब इससे बड़ा कोई वेन्यू नहीं है, वहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से परास्त कर दिया गया। बेथ मुनी विकेट कीपर बैटर 64-49 और उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। एंड ऑफकोर्स फोबे लिचफील्ड ने 48 रन की जो नॉक खेली और 100 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में, वो एक आसान सी जीत तय कर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध।
1: और अब हमारी साझेदारी होने वाली हमारे एक और कॉलर के साथ। हेलो
3: हेलो शिशि, गुरु गौरंग गदाधर नित्यानंद अद्वैत, हरे कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभाष है, और मेरा प्रश्न है कि मैं प्रेम प्रदीप दास बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ।
1: जी आप सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए।
3: कि अभी जो आप हमारे जो टीम का जो मेंटल मेकअप देखा है ना, जो ऑस्ट्रेलिया जो जीता है, जैसे टीम वर्क जो इतना अच्छा है, तो क्या हमारी टीम में क्या बदलाव ले आ सकते हैं? माने जैसे बोलते हैं ना, द टीम दैट प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, माने उनका जो टीम वर्क में और हमारा जो इसमें जो क्या बदलाव ला सकते हैं इंडिया के टीम में, इसको देख के, ये हमारा प्रश्न है।
1: जी बहुत सारी डिस्कशंस, अगर आप सुन रहे हो हमारे कार्यक्रम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने क्या एडिशन हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उस बारे में चर्चा जरूर की है। जैसे जैसे अभी आगे चर्चा बढ़ेगी आप और इस बारे में जान पाएंगे, लेकिन एक चीज मोना, बिकॉज ये परफेक्ट मौका है, आप जर्नलिस्ट हैं एंड दैट टू सच अ सीजन वन एक्सपेंशन जो क्रिकेट की हुई है, खासकर ये जो वर्ल्ड कप है, मैसिव 12 टीम्स थी, कहीं आपको लगता है obviously this is good for cricketers, but जैसे आयरलैंड को बीच में लाया गया, so what do you think this adds an added time and a pressure and takes away the quality like you know some of the people were saying, or this is required to find maybe more stability in cricketing ground?
4: देखिए FIFA वर्ल्ड कप भी चल रहा है साथ में, ठीक है, 48 टीमें।

0: और बड़ी आलोचना हुई थी कि इससे क्वालिटी चली जाएगी और वो मजा नहीं आएगा जो बड़ी टीमों के बीच होना चाहिए। लेकिन आपने केप वर्दी का नाम सुना
1: जी,
0: कुरासाओ का नाम सुना, तो ऐसे अगर आप एक तरफ बात करते हैं, आईसीसी बात करती है क्रिकेट को उन टेरिटरीज में ले जाने की जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता है, इतनी सारी लीग्स दुनिया भर में खेली जा रही है, तो ये जो छोटे देश हैं जिन देशों की आपने बात की जो पारंपरिक रूप से महाशक्तियां हैं क्रिकेट की, अगर उन्हीं के बीच में वर्ल्ड कप करा लिया जाएगा तो फिर इन देशों को इस तरह के एक्सपीरियंस का मौका कहां मिलेगा। और आप देखिए कि कितनी बार हमने वर्ल्ड क्रिकेट में उलटफेर देखे हैं जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है। तो अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक फेस की बात है, मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है।
2: राइट देन, समय आ गया कि अब हम लॉर्ड्स एक बार फिर से चलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उस बड़ी विश्व कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी अब ऑन है।
3: ऑन फील्ड अंपायर्स जैकलिन विलियम्स एंड व्रिंदा राठी। TV umpire, Kim Cotton. And fourth umpire, Nimali Pereira. We now invite the runners-up, England, to the stage to collect their runners-up medals from Mr. Richard Thompson and Miss Claire Connor. First up, Lauren Bell. Alice Capsey. Tilly Courtine Coleman. Charlie Dean. Sophia Dunkley, Sophie Eccleston, Lauren Filer, Danny Gibson, Danny Wyatt Hodge, Amy Jones, Freya Kemp, Heather Knight, Lindsay Smith, Izzy Wong, and England's captain, Nat Sivabrant.
4: It's okay. About 10 seconds.
5: Nat, you've run into another tough Australian side that love playing in finals. How difficult is this one to take?
6: I'm still hugely disappointed. We've had such a great competition up to this point, and I suppose to end like that feels a bit sour in the mouth at the moment. But we were outplayed today by a class Australian side that used all of their experience in a huge final. So
5: you've had a little bit of time to reflect. Having done that, what would you have done differently?
6: I actually went for a drug test because I was desperate for a wee. So I guess initially, ideally I'd won the toss and would be bowling first. I don't know, we were short of a par score on that wicket. It felt tricky to gain momentum throughout the innings with the bat. Obviously scratching around a little bit, trying to find the middle of the bat, I guess when the pressure's on, their bowlers hit their areas and made it very difficult for us, and I suppose we left it a bit too late in our bowling innings. So you're trying to start off the innings with great intent, with the ball, and trying to pick up as many wickets in the power play as we could, but

0: How was the experience this World Cup, Chetan?
1: बहुत बेहतरीन. देखिए, दो बेस्ट टीम्स रीच द फाइनल्स अनबीटन. एंड कहते हैं ना, जब आप बिना हार के वहाँ फाइनल तक पहुँचे हैं, एक को हारना था और वो इंग्लैंड की बारी थी. लेकिन कभी कभी इतनी मेहनत के बाद जब आपको हार का सामना करना पड़ता है, दुख लगता है. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों कैप्टन्स की इंटरव्यू सुन के कि जैसे जैसे उन्होंने इनकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं.
0: एंड क्विक थैंक यू टू मोना एज वेल. एंड यू वुड आल्सो लाइक टू से समथिंग क्विकली.
2: जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा. और जैसे कि जो सर्वश्रेष्ठ टीमें थी वो फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया.
0: वैशाली,
3: एज यू सेड कि यंग्स, जो भी यंगस्टर्स आएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है. एंड इससे देख के काफ़ी लड़कियाँ और क्रिकेट खेलें एंड उस तरीके का कॉम्पिटिशन और बेटर हो. मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स और खेलें, क्रिकेट खेलें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन. And thank you so much for to you and Manish ji, aapko bhi.
0: No, actually we have to thank our experts for being so gracious and always here to help us, guide us and help the cricket overall. And I would like to thank Chetan Sharma for joining us in the studio.
1: Thank you.
0: Your presence is always magnanimous. And thank you so much, Mona Parthasarathy. Your wisdom, your knowledge brings monumental gain to us. And Vaishali Mathur, you have been an addition to the cricket and of course to the studio. Thank you so very much for joining.
3: Thank you.
0: My friend Munish Jolly, it is always a pleasure having you. Why are you so quiet? Suddenly you're sleeping?
4: थैंक यू सो मच. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वैशाली जो बात आपने की उसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का समापन हम कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस. इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्लेयर. आई थिंक आकाशवाणी लुक्स फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ यंग टैलेंटेड वुमेन, द लेडीज, द गर्ल्स टू कम एंड बिकम स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स. एंड थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि हम लोग जाएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है, मनोज कुमार, सुशील कुमार, संजय कोटनाला जो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं स्वाति कपूर, अमीशा पटेल, तन्मय पंत और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, आप सब तक ये प्रसारण बहुत मेहनत मशक्कत के साथ लेकर आए हैं. आशा करते हैं ये प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सभी को पसंद आई होगी.
0: जी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू मेड द वर्ल्ड कप फाइनल अलाइव फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज वेल एज अस. सो थैंक यू सो वेरी मच. दिस इज गीतांजलि, मुनीश एंड ऑल द टीम फ्रॉम आकाशवाणी सेइंग कीप ऑन एंजॉयिंग क्रिकेट. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.
5: प्लेयर ऑफ द मैच.
6: अभी आप ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
7: यू हैव बीन लिस्टिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज।

आज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मंगल

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कर।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए नवाचार मंच मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर वक्रोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य

शुरू हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृत मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।

0: आकाशवाणी
1: एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप अपने दोस्त मोहन के साथ कार्यक्रम सुहानी रात में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत कुमार सानू की आवाज में इस प्यारे से गीत के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मैं
1: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
0: आए हाय।
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम है साजन। इसी गीत के साथ श्रोताओं, सुहानी रात फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा।

0: मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विरकोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और 1 घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग-अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत नॉन स्टॉप गीत संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: ¡Ay, sí, Terry Boli!
1: ¡Ay, hay!
0: ¡Tiri, tiri, chinazar, me hai jadoo!
1: ¡Aré, besure gane, kyo suna rahi ho mujhe!
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: FM रेनबो पे अभी आप सुन रहे थे गीत संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 2:53 और ठीक 41 सेकेंड।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विरकोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात

0: भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चाल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और 1 घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सिफुलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: मिडनाइट मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद ही खूबसूरत बेहतरीन गीत के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 27 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अपने सदस्यों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विक्रोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चोल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और 1 घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में

संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सेफ्यूलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा, आपके साथ मैं आपकी दोस्त

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।